अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का आराधना चैनल। आइए अब सुनते हैं श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: श्री राम लला भगवान के, श्री आनंद गंध भगवान के, श्री कौसल्यानंदन भगवान के, श्री दशरथ नंदन भगवान के,
1: जय
0: श्री कैकेयी नंदन भगवान के,
1: जय
0: श्री सुमित्रानंदन भगवान के।

ये आकाशवाणी का आराधना चैनल है। आइए सुनते हैं आकाशवाणी श्रीनगर के बालटाल और पहलगाम से अमरनाथ यात्रा पर विशेष प्रसारण।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz, पहलगाम के प्राचीन मार्ग पर आप हमें FM पहलगाम 100.1 MHz, DTH की आराधना सर्विस, आकाशवाणी की मोबाइल ऐप तथा आकाशवाणी के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी हम उपलब्ध है। श्रोता आपको बताते चले, श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का आज 25वां जत्था सुबह तड़के जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से घाटी की ओर रवाना किया गया। 177 छोटे बड़े वाहनों में कुल मिलाकर 3,886 तीर्थयात्री

गाड़ी की ओर रवाना किए गए, जिनमें 3098 पुरुष, 673 महिलाएं, 5 बालक, 87 साधु, 22 साध्वी, 1 साधु बालक भी शामिल है। जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से सुबह तड़के कुल मिलाकर 3886 तीर्थ यात्री घाटी की ओर रवाना किए गए। ईश्वर से यही प्रार्थना, सभी तीर्थ यात्री सफल और सुखद तरीके से घाटी पहुंचे और पवित्र गुफा पहुंचकर शिवजी के दर्शन प्राप्त करने में सफल रहे। हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना कि सभी तीर्थ यात्री, सभी शिव भक्त जो है, उनकी यात्रा स्वस्थ और प्रसन्न रहे, यही हमारी मनोकामना है। आकाशवाणी क्षण क्षण की सूचनाएं आप तक पहुंचाते रहेगा। आप बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण के संग।

विश्वतो दब्धासो अपरीतास उद्भिदः देवानो यथा सद्मिद्वृधे।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम बालतल, एफएम पहलगाम, डीटीएच की आराधना सर्विस, आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआर तथा आकाशवाणी के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी हम उपलब्ध हैं। श्रोताओं, आपको बताते चले, इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद तस्कीन राष्ट्रीय राजमार्ग से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। क्या कुछ अपडेट्स हैं, आइए सुनते हैं। तस्कीन, स्वागत करते हैं आपका इस विशेष प्रसारण।

0: जी बहुत शुक्रिया। आज 25वां बैच है श्री अमरनाथ यात्रा का 2 अगस्त को, तो कल जैसा कि आपको मालूम है कि कल मौसमी खराबी की वजह से, हाईवे की खराबी की वजह से यात्रा का काफला मौतल किया गया था, लेकिन आज जम्मू के भगवती नगर से रवाना किया गया, ऐसे अलग सुबह रवाना किया गया और इस वक्त ये रामबन डिस्ट्रिक्ट में पहुंच चुकी है श्री अमरनाथ यात्रा
1: जी।
0: का ये 25वां बैच। तो ये करीबन 3 बजे से पहले ही निकला था जम्मू से आज सुबह। तो यह मौसमी जो कहेंगे तो हल्की हल्की बारिशें आज अलल सुबह करीबन 3-4 बजे हुई है, लेकिन उसके बावजूद जो जम्मू से अंग्रेज आ रहा है ट्रैफिक के लिए बिल्कुल बहाल है। और ट्रैफिक इस वक्त यहाँ जो यात्रा का ट्रैफिक है बालतल के रास्ते जो जाने वाला है करीबन रामबन के मतलब इस सेक्टर में गुज दाखिल हो चुका है और इसमें बानहाल की तरफ बढ़ रहा है जो इनकी अगली मंजिल है। बानहाल का जो यहाँ पर यात्रा ग्राउंड है लांबर में, तो वहां पर इनको यहाँ पर रोका जाएगा, तो उसके बाद यहाँ से इन्हें कश्मीर की तरफ रवाना किया जाएगा। जो हाईवे का है वो कल क्लियर किया गया था, हाईवे करीबन 22 घंटे तक कल भी बंद था, मतलब अगर कल के दिन की बात करेंगे तो उसमें कल इसे बहाल किया गया। जो मुख्तलिफ मुकामात पर हाईवे को खराबी हुई थी खासकर उधमपुर के क्षेत्र में, तो वहां पर इसे क्लियर किया गया और इसमें जो ट्रैफिक का रुका हुआ था उसे देर रात तक निकाला गया, कश्मीर से भी और नगरोटा से भी, यानी काजीगुंड से भी और नगरोटा से भी, और इस तरह से जो ट्रैफिक थ्रू करने के बाद जो आज सुबह से ही जो श्री अमरनाथ यात्रा का काफिला निकाला गया, उसके बाद अब जम्मू से जो बाकी जो ट्रैफिक को आना है तो वो आना शुरू हो गया 7 बजे से, और 11:30 बजे के बाद यहाँ काजीगुंड से जम्मू की तरफ जो ट्रैफिक है जो रूटीन का ट्रैफिक होता है तो उसे चलने की इजाजत दी जाएगी। फिलहाल जो हाईवे ओपन है, मौसम अब्र आलूद है, हल्की बारिशें हुई उससे मौसम बहुत खुशगवार बना हुआ है और ट्रैफिक जो है वो चल रहा है। अगर ये 25 बैच की बात करें तो अभी तक जो भगवती नगर का बेस कैंप है वहां से अब तक जो यात्रियों की तादाद है कश्मीर पहुंचने वाले वो 1,39,000 से क्रॉस कर गई है, जबकि जो सरकारी आंकड़े हैं उनके मुताबिक 4 लाख से जायद जो श्री अमरनाथ यात्री हैं उन्होंने अब तक पवित्र गुफा का मतलब के दर्शन किए हैं, ऊपर मतलब पहुंचकर अमरनाथ गुफा में पहुंचकर वहां पर पवित्र गुफा के दर्शन किए हैं। तो उम्मीद है कि आज मौसम इसी तरह जो अपर आलूद है ठीक रहेगा। इस सेक्टर में जो हाईवे का है इसमें बेशतर काम जो पीछे काम रोक कर किया गया हाईवे पर, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और ट्रैफिक पुलिस ने इसका पीछे भी एक दिन ड्राई डे लिया गया, यानी हाल्ट लिया गया था ट्रैफिक हाईवे का, हालांकि यात्रा उस दिन छोड़ी गई, लेकिन मजमूई तौर पर जो ट्रैफिक हाईवे की इम्प्रूवमेंट के लिए जो ये काम किया गया था वो ऑलमोस्ट किया गया है और उम्मीद है कि आइंदा आने वाले दिन जो है यात्रा के इसमें बहुत बेहतर तरीके से और भी ट्रैफिक को चलाया जाएगा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद तस्कीन, विस्तार में जानकारी साझा करने के लिए
0: जी, बहुत शुक्रिया।
1: श्रोता ये थे मोहम्मद तस्कीन, राष्ट्रीय राजमार्ग से अपडेट दे रहे थे। जैसा कि भी बता रहे थे कि मौसम जो है आज अबरालुद ही रहेगा और हल्की वर्षा होने की भी संभावना जताई गई है, ताहम तीर्थ यात्रियों का आज जो है 25वां जत्था तड़के जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से घाटी की ओर रवाना किया गया और ये तीर्थ यात्री जो है बालटल के मार्ग से पवित्र गुफा की ओर रवाना किए जाएंगे, शिव जी के दर्शन प्राप्त करेंगे। हमारी यही ईश्वर से प्रार्थना कि मौसम जो है बेहतर रहे और दोनों मार्गों पर जो है तीर्थ यात्री अपनी इस पवित्र यात्रा को जो है जारी रख पाए। श्रोताओ, पवित्र गुफा तक के सफ़र में जो है आपको जगह जगह पर प्रकृति की सुंदरता, शिव भक्तों के भीड़ के साथ चलते चलते जो है आपका मन हमेशा प्रसन्न रहता है, आप में नई फूर्ति, नई ऊर्जा और हमेशा जो है आपको तनाव से मुक्ति मिलती है। शिव जी से हमारी यही प्रार्थना कि आपकी ये पूरी यात्रा सफल, सुखद और मंगलमय हो, यही हमारी मनोकामना है। आकाशवाणी क्षण क्षण की सूचनाएं आप तक पहुँचाते रहेगा, आप बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण के संग।

0: श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्स, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्स, डीटीएच की आराधना चैनल, आकाशवाणी की मोबाइल ऐप, न्यूज़ ऑन एआईआर एवं आकाशवाणी के मोबाइल ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी हम उपलब्ध है। श्रोताओं, आपको बताते चले, इस वक्त हमारे साथ जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से हमारे संवाददाता जावेद मेहराब जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। क्या कुछ अपडेट्स हैं जम्मू से उनके पास, आइए सुनते हैं। जावेद, स्वागत करते हैं आपका इस विशेष प्रसारण में।
1: जी, बहुत शुक्रिया आपका। पवित्र श्री अमरनाथ जी की यात्रा एक दिन स्थगित रहने के बाद आज फिर से यहाँ निवास स्थान भगवती नगर से रवाना हुई। पिछले दो दिनों की कड़ी मेहनत के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग अथॉरिटी ने उधमपुर जिले के देवल इलाके की में एक बड़े भूस्खलन को हटाकर सड़क को चलने के काबिल बना दिया और कल ही लगभग दोपहर के बाद

0: रास्ता खोल दिया गया और आज यहाँ निवास स्थान भगवती नगर से उसी जोश जज्बे के साथ तीर्थयात्रियों का जत्था यहाँ घाटी की ओर बाबा बर्फानी के द्वार की तरफ रवाना हो गया। जत्थे में 3,886 श्रद्धालु शामिल थे, जिनमें 3,098 पुरुष, 673 महिलाएं, बालक 5, साधु 87 और साध्वी 22 और साधु बालक 1 शामिल हुआ।
1: जी
0: 177 वाहनों का ये काफिला सुबह तड़के यहाँ 2:30 बजे के बीच रवाना हुआ और यहाँ जयकारों के साथ और पूरे जोश खरोश के साथ रवाना हुआ। निवास स्थान भगवती नगर से रवाना होने वाले ये इस 25वां जत्था था। यहाँ कल दिन भर भी जम्मू में मौसम खुश्क बना हुआ था, बादल आसमान पर थे लेकिन बरसे नहीं। इस दौरान तीर्थ यात्री भी निवास स्थान भगवती नगर में बाबा बर्फानी के द्वार की तरफ जाने की तैयारियों में जुटे रहे और उन्हें उम्मीद थी कि जिस तरह से प्रशासन तीर्थ यात्रा को सुचारू रूप से बनाने के लिए हर स्तर पर कार्य कर रही है और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित कर यात्रा को यहाँ से पहली प्राथमिकता के साथ हर रोज रवाना करती आई है, उन्हें उम्मीद थी कि आज उन्हें अनुमति मिलेगी और यात्रा यहाँ से रवाना होगी और ऐसा ही हुआ। जम्मू कश्मीर के बदले मौसम के मिजाज से प्रशासन के सामने तीर्थ यात्रा को बेहतर और सुचारू रूप से चलाने का चैलेंज हर दिन एक नई चुनौती के साथ खड़ा होता है, लेकिन यात्रा से जुड़े तमाम संस्थानों की कड़ी मेहनत से यात्रा बखूबी कामयाबी के साथ चल रही है और आज आंकड़ा 5 लाख तक पहुंचने के करीब हो चुका है, तो ये एक बड़ी कामयाबी है। लेकिन इस बीच यहाँ पवित्र श्री अमरनाथ जी का पर्व शहर भर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और इस दौरान श्रावण मास भी शहर के मंदिरों को रौनक कर रहा है और उससे रौनक ये दिखाई दे रही है कि स्थानीय लोगों के साथ साथ श्रद्धालु भी यहाँ के स्थानीय और प्रथम मंदिरों में पूजा अर्चना करते और विशेष पूजाओं में हिस्सा ले रहे हैं और यहाँ का आशीर्वाद भी प्राप्त कर रहे हैं, जिससे यहाँ का वातावरण जो है वो बहुत शिवमय बना हुआ है और श्रद्धालु भी इस विशेष वातावरण में खूब मजा भी ले रहे हैं और शहर का भी आनंद उठा रहे हैं और साथ साथ अपनी पूजा अर्चनाओं में भी हिस्सा ले रहे हैं और बाबा बर्फानी के द्वार की तरफ जो सुचारू रूप से, जैसे मैंने कहा कि प्रशासन चला रही है तीर्थ यात्रा को ताकि श्रद्धालुओं की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो और श्रद्धालुओं को सभी प्रबंधन और सभी उनकी जो भी सुख सुविधाएं हैं उन्हें सभी उसी तरह मिले जिस तरह पहले दिन से मिल रही थी और तभी ये यात्रा उसी जोश जज्बे के साथ उसी दिशा निर्देश के साथ बराबर चल रही है और श्रद्धालु भी सभी दिशा निर्देश का पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ निवास स्थान में तमाम तरह की सुविधाएं उसी ढंग से बराबर रखी गई है जिस तरह से पहले दिन से तीर्थ यात्रियों के लिए रखी गई थी। सभी कर्मचारी, सभी सुरक्षा बल और तमाम तरह की मैनेजमेंट यहाँ इस तीर्थ यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है और ये यात्रा जो है कामयाबी के साथ यहाँ से निकलती भी दिखाई दे रही है और रोज रवाना भी होती है और श्रद्धालु उसी जोश जज्बे के साथ बाबा बर्फानी के जयकारे लगाते हुए न सिर्फ दिन भर इस शहर में नजर आते हैं बल्कि रोजाना रवाना भी होते हैं। कई कई बाधाएं आई, वो राष्ट्रीय राजमार्ग या मौसम की चुनौतियों को देखते हुए प्रशासन ने कुछ फैसले भी लिए, लेकिन उसके बावजूद यात्रा जो है उसको पहली प्राथमिकता के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलने की इजाजत होती है और यहाँ भी राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी हजारों ट्रैफिक विभाग के कर्मचारी बराबर यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए रात भर बल्कि सुबह तड़के भी यहाँ बिल्कुल खड़े होते हैं ताकि तीर्थ यात्रियों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। यहाँ अभी भी राष्ट्रीय राजमार्ग के अलावा शहर भर में जो संस्थान इस तीर्थ यात्रा को सुचारू बनाने के लिए, जिसमें लंगर कमेटियां हैं, लंगर समितियां हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं हैं और उसके अलावा जो प्रशासन ने यहाँ चिकित्सा के, योगा के और तमाम तरह की जो

0: मुफ्त दवाइयाँ, मुफ्त चिकित्सा को यकीनी बनाया है, उससे तीर्थ यात्रा बिल्कुल अपने सुचारू रूप से चल भी रही है और कामयाबी के साथ तीर्थ यात्री यहाँ से रवाना भी हो रहे हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है। और इस बीच तीर्थ यात्रा की जो पूजा अर्चनाएं हैं वो बराबर हो रही है। छड़ी मुबारक 29 तारीख को शुरू हुई थी, वो भी लगातार उसकी पूजा अर्चनाएं चल रही है। महादेवेंद्र गिरी भी लगातार अपनी जो पूजा अर्चनाएं हैं जिस तरह से यहाँ सुरक्षा को बनाते हुए इस पूरे घाटी भर में और यहाँ भी जम्मू में बराबर इसकी समीक्षा भी की जाती है और साथ साथ बड़े कदम और फैसले भी लिए जाते हैं ताकि तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को भी सुनिश्चित किया जाए और उनको मिल रही तमाम जो प्रबंधन जो उनके लिए बनाया गया है उस प्रबंधन में भी किसी तरह की कोई कमी न हो। जी
1: बहुत बहुत धन्यवाद जावेद, विस्तार में जानकारी साझा करने के लिए
0: बहुत शुक्रिया।
1: श्रोताओ, ये थी जावेद मेहरा, जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से अपडेट दे रहे थे, बता रहे थे कि आज किस तरह से जो है सुबह तड़के 3 बजे जो है जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का 25वां जत्था जो है घाटी की ओर रवाना किया गया। 177 छोटे बड़े वाहनों में कुल मिलाकर 3,886 तीर्थ यात्री घाटी की ओर रवाना किए गए। ताहम बीच रास्ते में जो है आज मौसम अबर आलूद ही रहेगा, बादल ही आसमान में छाए रहेंगे और कहीं कहीं जगह जो है हल्की वर्षा होने की भी संभावना जताई गई है। महकमे मौसमियात से मिली ताज़ा सूचना के अनुसार जो है आज कई एक जगहों पर हल्की वर्षा होने की संभावना जताई गई है। ताहम तीर्थ यात्री जो है घाटी की ओर आज रवाना किए गए और राष्ट्रीय राजमार्ग भी जो है आज खोला गया है तीर्थ यात्रियों के लिए। 3,886 तीर्थ यात्री घाटी की ओर रवाना किए गए। आपको बताते चले, ये सभी तीर्थ यात्री जो है लांबर ग्राउंड काजीगुंड पहुंचते हुए जब पहुंचते हैं तो इस तीर्थ यात्रियों के जत्थे का जो है विभाजन होता है। एक हिस्से को पहलगाम के प्राचीन मार्ग से गुफा की ओर रवाना किया जाता है, वही दूसरे हिस्से को जो है श्रीनगर ट्रांजिट कैंप पांथा चौक पहुंचाया जाता है। वही आज जो जत्था 25वां जत्था घाटी की ओर रवाना किया गया। फिलहाल जो है सभी तीर्थ यात्री आज बालतल के मार्ग से ही पवित्र गुफा की ओर रवाना किए जाएंगे। बालतल से होते हुए आप दुमेल, ब्रारी मर्ग और संगम से होते हुए आप पवित्र गुफा पहुँच जाते हैं, जहाँ आप तीर्थ यात्री जो है शिव जी के दर्शन प्राप्त करते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा जो है केवल एक धार्मिक यात्रा ही नहीं है, बल्कि यहाँ जो है आस्था, समर्पण, साहस और आध्यात्मिक चेतना का अद्भुत संगम हमें देखने को मिलता है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी लाखों शिव भक्त जो है कठिन मार्गों से होते हुए शिव जी के दर्शन प्राप्त कर चुके हैं और यात्रा जो है विशेष उत्साह से जारी है और सभी लोग जो है तीर्थ यात्रियों की सेवा में लगे हुए हैं, चाहे वो खान पान के से जुड़े लोग हैं, स्थानीय नागरिक जो है, सरकार प्रशासन के जो नागरिक है, मुख्तलिफ काउंटर्स पर आपको मिलेंगे, जगह जगह पर जो है आपको लोग मिलेंगे, आपकी सेवा में मिलेंगे। और कोशिश यही है कि जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से लेकर पवित्र गुफा तक जो है सभी तीर्थ यात्री सफल और प्रसन्न तरीके से पहुंच पाए और उस पवित्र यात्रा में जो है उनको किसी भी दुविधा का सामना ना करना पड़े। श्रद्धालुओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य और सुविधाओं के लिए जो है व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं और मुसलसल ये प्रबंध किए जा रहे हैं। प्रशासन, सुरक्षा बल, स्वास्थ्य विभाग, स्वयंसेवी संगठन और स्थानीय नागरिक जो है मिलकर जगह जगह तीर्थ यात्रियों की सेवा में लगे हुए हैं। कोशिश यही है कि सभी तीर्थ यात्रियों की यात्रा जो है वो यादगार बने और वो ये खूबसूरत यादें, खूबसूरत पल जो है अपने साथ ले जाए। आकाशवाणी विशेष प्रसारण आप इस वक्त सुन रहे हैं, FM बालतल, FM पहलगाम, आकाशवाणी के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी हम उपलब्ध हैं। आप बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण के संग।

0: श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM पहलगाम, FM बालतल, आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR तथा आकाशवाणी के OTT प्लेटफॉर्म वीव्स पर भी हम उपलब्ध हैं। श्रोताओं, इस वक्त पहलगाम से हमारे साथ हमारे संवाददाता इस तारीख फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। क्या कुछ अपडेट्स है, आइए सुनते हैं। तारीख, स्वागत करते हैं आपका इस विशेष प्रसारण में।
1: बहुत शुक्रिया इकबाल जी। तो साथ ही विशेष प्रसारण के सभी श्रोताओं को मेरा सुप्रभात। 57 दिनों तक चलने वाली श्री अमरनाथ जी यात्रा के आज 30 दिन पूरे हो चुके हैं
0: जी।
1: पहलगाम से श्री अमरनाथ जी के पवित्र गुफा तक आज मौसम आमतौर पर अब्रहानूद रहने का अनुमान है, जबकि दोपहर के समय वर्षा और बारिश के झटकों की संभावना व्यक्त की गई है। आज अधिक से अधिक दर्जे हरारत 14 डिग्री सेल्सियस और कम से कम 10 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वातावरण में मौसम सुहाना मगर अब्रहानूद है और दर्जे हरारत 11 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है, जबकि हल्की वर्षा के इम्कान 5 से 15% तक है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार सुबह लगभग 9:30 बजे से हल्की वर्षा शुरू होने की संभावना है, जो दोपहर 12:30 बजे के बाद वक्त वक्त से तेज वर्षा और बारिश के झड़ियों में बदल सकती है, और इस दौरान वर्षा के इम्कान 50

0: 60% तक बढ़ने का अनुमान है। शाम 5 बजे के बाद हल्की वर्षा का सिलसिला धीरे धीरे कम होने की संभावना है। शाम रात के समय मौसम आमतौर पर अब आलू रहेगा और दर्जे हरारत घटकर 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। दक्षिण पश्चिम दिशा से लगभग 3 मील प्रतिशत घंटा की रफ्तार से हल्की पवन चलने का अनुमान है, जबकि हवा में नमी की मात्रा लगभग 85% बरकरार रहेगी। प्रशासन ने श्रद्धालुओं और संबंधित अमले से अपील की है कि वर्षा और फिसलन के कारण यात्रा मार्ग पर पूरे सावधानी बरतें और सभी मौसमी व प्रशासनिक निर्देशों का पालन करें। यह भी आपके साथ साझा करता चलूं कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और मद्देनजर रखते हुए प्रशासन ने यात्रा के दोनों मार्ग पहलगाम और बालतल तथा जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर मौसम के निरंतर निगरानी के लिए 2 डॉपलर वेदर रडार स्थापित किए हैं। ये आधुनिक प्रणाली बादल फटने, मौसमदार वर्षा, गरज चमक, ओले, वर्षा और तेज पवन जैसे स्थानीय मौसमी संकटों की बरवक्त पहचान कर तुरंत चेतावनी जारी करते हैं, जिसके आधार पर यात्रियों की सुरक्षा और यात्रा के संचालन से जुड़े आवश्यक निर्णय लिए जाते हैं
1: जी।
0: तो इसी बीच आज जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से 177 छोटी बड़ी वाहनों में 3,886 यात्रियों पर मुश्तमिल एक और जथा बालतल के लिए घाटी की जानिब प्रवेश कर रहा है, जिसमें 3,098 पुरुष, 673 महिलाएं, 5 बालक, 87 साधु, 22 साध्वी और 1 बालक साधु शामिल है, जो 11 बजे काजीगुंड ट्रांजिट कैंप अबोर करने के बाद अपने अगले पड़ाव के लिए रवाना होंगे। तो 57 दिनों की यात्रा के आरंभ से अब तक बाबा बर्फानी के पवित्र दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की कुल संख्या पे अगर बात करें तो वो 4,55,281 तक पहुंच गई है, जबकि कल एक ही दिन में 8,493 श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के पवित्र गुफा में दर्शन प्राप्त किए। इधर पहलगाम के लुनवाला आधार शिविर, शिशनाग और पंचतरणी शिविरों में इस समय कोई भी श्रद्धालु मौजूद नहीं है, ताहम यात्रा मार्ग और सभी आधार शिविरों पर विभिन्न सरकारी और विभागों के अधिकारी और कर्मचारी श्रद्धालुओं की सेवा, सुरक्षा और आवश्यक सहूलियत के फराहमी के लिए पूरी निष्ठा के साथ तैनात है। तो हम यही आशा करते हैं कि बाबा बर्फानी के पवित्र दर्शन के लिए आने वाले सभी श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी हो और उनकी यात्रा सुखद, सुरक्षित और मंगलमय साबित हो। जी बात,
1: बहुत बहुत धन्यवाद तारिक, विस्तार में जानकारी साझा करने के लिए
0: बहुत शुक्रिया।
1: श्रोताओं, ये थे एस तारिक, पहलगाम से अपडेट दे रहे थे। जैसा कि बता रहे थे, जो तीर्थ यात्री है किसी भी कैंप में जो है अभी मौजूद नहीं है, ताहम रास्ता खुला है और तीर्थ यात्री बड़े उत्साह के साथ पवित्र गुफा की ओर रवाना दवा है। जो रुके हुए सभी तीर्थ यात्री थे उन्होंने जो है पवित्र गुफा पहुंचकर शिव जी के दर्शन प्राप्त किए हैं। और आपको बताते चले, जब आप पहलगाम के प्राचीन मार्ग से पवित्र गुफा की ओर जाते हैं तो इस प्राचीन मार्ग से जो है आपको 48 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता है। चंदनवाड़ी से होते हुए आप बिसू टॉप, जोजीबल, शेषनाग और महागुण स्टॉप पहुंच जाते हैं। महागुण स्टॉप जहां पर जो है आपको बहुत खड़ी चढ़ाई चढ़नी होती है, और जब आप महागुण स्टॉप पहुंचते हैं उसके बाद जो है आप पंचतरणी पहुंच जाते हैं। पंचतरणी में जो है आपका कैंपिंग ग्राउंड भी है, और पंचतरणी में जैसा कि बता रहे थे हमारे संवाददाता इस तारिक, अभी कोई तीर्थ यात्री जो है रुका हुआ नहीं है, सभी तीर्थ यात्री पवित्र गुफा पहुँच कर शिव जी के दर्शन प्राप्त कर चुके हैं। कल जो है कुल मिलाकर 8,460 तीर्थ यात्रियों ने जो है कल एक ही दिन में पवित्र गुफा पहुंचकर शिव जी के दर्शन प्राप्त किए हैं। वहीं आज जो है श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का 25वां जत्था घाटी की ओर रवाना किया गया। कुल मिलाकर 3,000 से अधिक तीर्थ यात्री आज बालतल के मार्ग से पवित्र गुफा की ओर रवाना किए जाएंगे। वहीं मौसम विभाग से मिली ताज़ा सूचना के अनुसार जो है आज दोनों मार्गों पर मौसम अबर आलूद ही रहेगा, ताहम किसी भी बड़ी मौसमी तब्दील की कोई रिपोर्ट नहीं है। दोनों मार्गों पर जो है शिव जी के भक्त जो है बड़े उत्साह के साथ पवित्र गुफा की ओर रवाना दवा है। आप बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण के संग। विशेष प्रसारण आप FM बालतल, FM पहलगाम, आकाशवाणी के मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR तथा आकाशवाणी के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी।

श्रोताओ, सुबह के 8 बजने वाले हैं। आइए अब आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में समाचार सुनते हैं।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7-7 हजार रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नीट पीजी 2026 परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की, परीक्षार्थियों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। तेलंगाना पुलिस ने बाल श्रम और मानव तस्करी के खिलाफ एक माह के विशेष अभियान में 6000 से अधिक बच्चों को बचाया। गुजरात, ओडिशा और केरलम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, गुजरात के 6 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज करने की धमकी दी। ईरान की भी अमेरिका और इसराइल के प्रमुख ऊर्जा ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की चेतावनी। और ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत चौथे स्थान पर, मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक ही दिन में 7 स्वर्ण पदक जीते। भारत के कुल पदकों की संख्या 39। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नशे की लत के खिलाफ 100 सप्ताह तक चलने वाले इस अभियान में देश भर में 10,000 से अधिक स्थानों से युवा भाग लेंगे।
3: इस अभियान में माई भारत के स्वयंसेवक, राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक, युवा क्लब, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संगठन, उद्योग संगठनों के युवा प्रकोष्ठ और 125 से अधिक सहयोगी आध्यात्मिक संगठन भी वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। देश भर में प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा, जिनका उद्देश्य नशा मुक्त

0: समाज के निर्माण के प्रति जागरूकता फैलाना और जन भागीदारी को बढ़ावा देना है। इन गतिविधियों में खेल प्रतियोगिताएं, वॉकाथॉन, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जन जागरूकता अभियान, नुक्कड़ नाटक, परिचर्चाएं, कला प्रतियोगिताएं और सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रम शामिल होंगे। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना और उन्हें अपने अपने समुदायों में सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन का अग्रदूत बनने के लिए प्रोत्साहित करना है। सौम्या के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के युवा विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नाटक के मैसूरु में कल स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
2: अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है, भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का सपना युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय स्नातकोत्तर पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट पीजी 2026 की तैयारियों की कल समीक्षा की है। ये परीक्षा इस महीने की 30 तारीख को आयोजित की जाएगी। एक रिपोर्ट।
3: बैठक के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने परीक्षा के सुचारू, सुरक्षित, पारदर्शी और उन्नत प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचालन सुनिश्चित किए जाने पर व्यापक विचार विमर्श किया। श्री नड्डा ने राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड NBEMS प्रौद्योगिकी भागीदारों और परीक्षा संचालन में शामिल अन्य हितधारकों की तैयारियों का आकलन किया। उन्हें परीक्षा व्यवस्था, उम्मीदवारों की सुविधा के उपाय, सुरक्षा ढांचा और नीट पीजी 2026 के लिए शुरू किए गए प्रौद्योगिकी आधारित उपायों के बारे में जानकारी दी। श्री नड्डा ने बात पर जोर दिया कि निष्पक्ष, पारदर्शी और उम्मीदवार हितैषी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए, साथ ही सत्यनिष्ठा और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखा जाना चाहिए। श्री नड्डा ने उम्मीदवारों से कहा कि वे अफवाहों से दूर रहें और केवल NBEMS तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें। समाचार कक्ष से मैं चंद्रशेखर शर्मा।
1: तेलंगाना पुलिस ने एक माह के विशेष अभियान में बाल श्रम और मानव तस्करी से 6,000 से अधिक बच्चों को बचाया है। ऑपरेशन मुस्कान अभियान के अंतर्गत बाल मजदूरी के चंगुल से 6,307 बच्चों को बचाया गया। राज्य में बाल श्रम और बाल तस्करी को समाप्त करने के उद्देश्य से 1 जुलाई से 31 जुलाई तक विशेष अभियान चलाया गया। महिला सुरक्षा प्रभाग की निदेशक चारू सिन्हा ने बताया कि ये अभियान उनके विभाग के नेतृत्व में महिला और बाल कल्याण विभाग, श्रम विभाग, स्वास्थ्य विभाग, बाल कल्याण समितियों, जिला बाल संरक्षण इकाइयों और स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से चलाया गया। अभियान के दौरान पुलिस ने 1,705 मामले दर्ज किए और 1,710 लोगों को गिरफ्तार किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड सोल्जर्स थॉन दिल्ली 2026 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मिजोरम के राज्यपाल जनरल वीके सिंह भी उपस्थित थे। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि सैनिकों के लिए दौड़ो, सैनिकों के साथ दौड़ो की सोच से प्रेरित सोल्जर्स थॉन नागरिकों और सशस्त्र बलों के बीच संबंधों को मजबूत करने का एक अनूठा मंच है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं।

0: से गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2,00,000 करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। गुजरात, ओडिशा और केरलम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। गुजरात में मौसम विभाग ने आज 6 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सौराष्ट्र क्षेत्र में कई स्थानों पर जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है।
2: दक्षिण और मध्य गुजरात को सराबोर करने के बाद बारिश का रुख अब सौराष्ट्र की तरफ हो गया है, जिससे कई जिलों में भारी जलभराव हुआ है। मोरबी तालुका में पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई। बारिश के चलते राज्य के 20 जलाशय छलक गए हैं, जबकि 30 बांधों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। राज्य की जीवन रेखा नर्मदा बांध लगभग 75% भर चुका है। राज्य में अब तक मौसम की औसत 64% बारिश दर्ज हो चुकी है। तेज हवाओं को देखते हुए मछुआरों को अगले 2 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी है। साथ ही राज्य के सभी बंदरगाहों पर 3 नंबर का चेतावनी सिग्नल लगाया गया है। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: इस बीच ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है, लेकिन महानदी बेसिन में नदियों का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में खतरा अभी भी बना हुआ है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने राहत और पुनर्वास कार्यों की निगरानी के लिए 4 मंत्रियों को तैनात किया है। उधर केरलम में तेज बारिश से कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने आज तिरुवनंतपुरम और कोल्लम को छोड़कर राज्य के 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। खराब मौसम और समुद्र में तेज लहरों को देखते हुए मछली पकड़ने पर रोक लगा दी गई है। जम्मू कश्मीर में मौसम विभाग ने कुछ स्थानों पर तेज बारिश, बादल फटने और अचानक बाढ़ की संभावना को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी है। आज प्रदेश के कुछ हिस्सों में बौछारें पड़ सकती हैं। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सईदोब बख्तियार ओदिलोविच आज से 5 अगस्त तक भारत के आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार वे राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि जब तक ईरान समुद्री जहाजों पर हमले बंद नहीं करता और बातचीत के लिए तैयार नहीं होता, तब तक अमरीकी हमले जारी रहेंगे। इस बीच अमरीकी विदेश विभाग ने पश्चिम एशिया में रह रहे अपने नागरिकों को क्षेत्र छोड़ने या स्थिति बिगड़ने पर वहां से निकलने के लिए तैयार रहने की सलाह दी है। ईरान के सरकारी मीडिया के अनुसार एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने कहा है कि ईरान ने संभावित सैन्य कार्रवाई की स्थिति में इसराइल के महत्वपूर्ण ठिकानों और क्षेत्र में मौजूद अमरीकी ऊर्जा परिसंपत्तियों पर हमला करने की योजना तैयार कर ली है। और अब राष्ट्रमंडल खेलों से जुड़ी जानकारी के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों के 10वें दिन 4 अलग अलग स्पर्धाओं में 16 पदक जीतकर भारत पदक तालिका में 4थे स्थान पर पहुंच गया है। भारत ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक अपने नाम किए हैं। भारत के खाते में सबसे अधिक 10 पदक मुक्केबाजी से आए हैं। भारतीय एथलीटों ने पुरुषों के पैरा शॉटपुट और पुरुषों के ट्रिपल जंप में 2-2 मेडल जीते, जबकि जूडो और एथलेटिक्स में 1-1 मेडल अपने नाम किया। भारतीय मुक्केबाजों ने राष्ट्रमंडल खेलों में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 7 स्वर्ण पदक जीते। ये इन खेलों के किसी एक संस्करण में किसी भी देश द्वारा जीते गए सर्वाधिक स्वर्ण पदक हैं। भारत को पैरा एथलेटिक्स में भी सफलता मिली, जहां पुरुषों की F57 शॉटपुट स्पर्धा में भारत के खिलाड़ियों ने पहला और दूसरा स्थान हासिल किया। सोमन राणा ने स्वर्ण जबकि शुभम जुयाल ने रजत पदक जीता। एथलेटिक्स टीम ने 3 और पदक अपने नाम किए। पुरुषों के ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रवेल ने रजत और सेल्वा प्रभु थिरुमारन ने कांस्य पदक जीता, जबकि लंबी दूरी के धावक गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। जूडो खिलाड़ी उन्नति शर्मा ने भी महिलाओं के 63 किलो भार वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद जागृति। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के स्वर्णिम दिन को सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, भारत पर सोने की बारिश। दैनिक भास्कर लिखता है,

0: पहली बार एक दिन में 8 स्वर्ण, 5 सिल्वर समेत कुल 15 मेडल। रिकॉर्ड शीर्षक से पत्र ने बताया है कि इस बार 13 में से 8 गोल्ड महिलाएं लाईं। जनसत्ता की खबर है, कुलगाम आतंकवादी हमले में घायल दूसरे प्रवासी मजदूर ने भी तोड़ा दम। नाम पूछकर दोनों मजदूरों को नजदीक से गोली मारी गई थी। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर अराजकता को उचित ठहराने की कोशिश का विश्लेषण किया है। पत्र लिखता है, कॉकरोच जनता पार्टी मांग कर रही है कि उसके प्रदर्शन में जिन्होंने हिंसा की उन्हें भी माफी दी जाए। ऐसा करने से गलत परिपाटी बनेगी और इसका लाभ अराजक तत्व उठाएंगे। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, नए पेपर लीक रोधी विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी, राज्यों में बनेंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट। कॉलेजियम की पारदर्शिता पर जस्टिस भुइयां ने उठाए सवाल, लिखता है अमर उजाला। उन्होंने कहा, किसी जज को क्यों चुना, नहीं बताना बाकी के लिए अन्याय। नवभारत टाइम्स ने ऑनलाइन खरीदारी पर टिप्स देते हुए सतर्क किया है, पार्सल का खाली डिब्बा भी करा सकता है खाता खाली। साइबर ठग इससे आपके बैंक अकाउंट में सेंधमारी कर रहे हैं, डब्बा फेंकने से पहले उसे छोटे छोटे टुकड़े करके फेंकें। राजस्थान पत्रिका की संडे स्पेशल स्टोरी एआई की क्रिएटिविटी पर केंद्रित है। पत्र ने लिखा है, कोई बन रहा रचनाकार तो कोई एआई से संगीत तैयार कर गायन के शौक पूरे कर रहा।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नीट पीजी 2026 परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की, परीक्षार्थियों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील। तेलंगाना पुलिस ने बाल श्रम और मानव तस्करी के खिलाफ एक माह के विशेष अभियान में 6,000 से अधिक बच्चों को बचाया। गुजरात, ओडिशा और केरलम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, गुजरात के 6 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत चौथे स्थान पर, मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक ही दिन में 7 स्वर्ण पदक जीते। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to launch nationwide campaign Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan today. Union Minister Jagat Prakash Nadda reviews preparedness for NEET PG 2026 examination, urges aspirants not to fall prey to rumours. Telangana police rescues over 6,000 children in a month-long drive aimed at ending child labour and trafficking. Flood situation continues to be grim in Gujarat, Odisha and Keralam. Weather Department issues red alert for heavy to very heavy rainfall across 6 districts in Gujarat today. US President Donald Trump threatens to intensify military action against Iran. Tehran warns of retaliation on key American and Israeli energy infrastructures. India climbs to 4th position in Commonwealth Games in Glasgow. Boxers shine with record 7 gold in single day, taking medals tally to 39. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will launch the nationwide campaign Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan today through video conferencing. The launch will mark the beginning of a 100-week nationwide Jan Bhagidari campaign against substance abuse. More from our correspondent.
3: Youth across the country from over 10,000 locations will participate in the Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan. My Bharat volunteers, My Bharat National Service Scheme volunteers, youth clubs, schools, colleges, universities, NGOs, youth wings of industry associations and more than 125 spiritual organizations will also join the program virtually. Under the campaign, weekly activities will be organized every Sunday across the country to promote awareness and encourage public participation in building a drug-free society. The activities will include sports events, walkathons, meditation sessions, cultural programs, awareness campaigns, Nukkad Natak, discussion forums, art competitions and community engagement programs. The initiative aims to inspire youth to stay away from substance abuse and encourage them to become ambassadors of positive social change in their communities. With Soumya Saklan Akhtar for Akashwani News, Delhi.
2: Prime Minister Narendra Modi has said the potential of youth becomes a driving force only when they find the right opportunities and the right direction to dream big with confidence to realize their goal. He was speaking

0: शर्मा का मुकाबला वियतनाम की आलमी नंबर 21 खिलाड़ी थुई लिन से होगा। तन्वी सेमीफाइनल में चीनी ताइपी की खिलाड़ी हुआंग यू हुस्न को 21-17, 21-11 से शिकस्त देकर फाइनल में पहुंची हैं। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया शमीम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारात ने आंध्र प्रदेश में वजीर आजम के हाथों मुख्तलिफ प्रोजेक्टों के इफ्तिताह की खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। अखबार इनकलाब लिखता है, वजीर आजम मोदी ने आंध्र प्रदेश में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। अखबार प्रताप की शह सुर्खी है, वजीर आजम आज नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान का आगाज करेंगे। पब्लिक इम्तिहान में गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल को सदर जमहूरिया के जरिए मंजूरी दिए जाने की खबर को अखबारात ने नुमायां तौर पर शाया किया है। इसके अलावा अखबारात ने कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में कमी की खबर को भी अहमियत दी है। अखबार इंकलाब की एक और अहम सुर्खी है, मशरक वस्ता के हालात संगीन, अमरीका ने अपने शहरियों को फौरी इनखला के लिए तैयार रहने की हिदायत दी। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए आज मूसलाधार बारिश की महकमे मौसमियात की वार्निंग की खबर भी बेशतर अखबारों में नुमाया है।
0: और अब खबरनामे की खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए मुल्क गिर नशा मुक्त युवा मुहिम का आगाज करेंगे। मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा ने नीट पीजी 2026 इम्तिहान की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने उम्मीदवारों से जोर देकर कहा कि अफवाहों पर ध्यान न दें। तेलंगाना पुलिस ने बच्चा मजदूरी और ट्रैफिकिंग के खात्मे की गरज से शुरू की गई एक महीने तक जारी मुहिम के बाद 6,000 से ज़्यादा बच्चों को बचा लिया है। गुजरात, उड़ीसा और केरलम में सैलाब की सूरत हाल अब भी तश्वीशनाक है। महकमा मौसमियात ने आज गुजरात के 6 ज़िलों में तेज़ और इंतहाई तेज़ बारिश के सिलसिले में रेड अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ खबरनामा ख़त्म हुआ।
2: श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं। FM बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, पहलगाम के प्राचीन मार्ग पर आप हमें FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़, DTH की आराधना सर्विस, आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR तथा आकाशवाणी के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी हम उपलब्ध हैं। श्रोताओं, श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 पूरे उत्साह के साथ विशेष रूप से जारी दोनों मार्गों पर जारी है। आज यात्रा का 25वां जत्था सुबह तड़के जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से घाटी की ओर रवाना किया गया। 177 छोटे बड़े वाहनों में 3,000 से अधिक तीर्थ यात्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर इस वक्त चल रहे हैं। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, आज जो है राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई जगहों पर जो है हल्की वर्षा होने की भी संभावना जताई गई है। वहीं अगर श्रीनगर की बात करें तो इस वक्त जो है वर्षा हो रही है। पहलगाम के प्राचीन मार्ग और बालटल के मार्ग पर भी हल्की वर्षा इस वक्त हो रही है। ताहम तीर्थ यात्री पूरे जोश और उत्साह के साथ पवित्र गुफा की ओर रवा दवा है। ताज़ा सूचना के अनुसार जो है अभी तक 100 से अधिक तीर्थ यात्रियों ने शिवजी के दर्शन प्राप्त किए हैं। मौसम विभाग से मिली ताज़ा सूचना के अनुसार आज राष्ट्रीय राजमार्ग श्रीनगर, बालटल और पहलगाम सभी जगहों पर जो है आज हल्की से दरमियाना दर्जे की वर्षा होने की संभावना जताई गई है। ताहम सभी तीर्थ यात्रियों से यही निवेदन कि आप जो है प्रशासन द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करते रहे ताकि आपकी यात्रा सुखद तरीके से जारी रहे। आकाशवाणी क्षण क्षण की सूचनाएं आप तक पहुंचाते रहेगा। आप बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण के संग।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz, पहलगाम के प्राचीन मार्ग पर आप हमें FM 100.1 MHz, DTH की आराधना चैनल, आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR, आकाशवाणी के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स के अलावा आप हमें YouTube

राष्ट्रीय राजमार्ग पर रवा दवा है। आज घाटी आ रही सभी तीर्थ यात्री बालटल के मार्ग से पवित्र गुफा की ओर रवाना किए जाएंगे। पहलगाम के प्राचीन मार्ग से तीर्थ यात्रियों को आज नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि ऊपरी क्षेत्र में जो है कई एक जगहों पर रिपेयरिंग की काम चल रही है, रोड्स को रिपेयर किया जा रहा है। उसी के मद्देनज़र जो है आज सभी तीर्थ यात्रियों को श्रीनगर ट्रांजिट कैंप पांथा चौक पहुंचाया जाएगा। वहां से होते हुए गांदरबल की ओर लिया जाएगा। गांदरबल से होते हुए आप दुमेल, ब्रारी मार्ग और संगम पहुंच जाते हैं। संगम से पवित्र गुफा तक आपको महज 3 किलोमीटर का सफ़र तय करना होता है। बालटल का मार्ग जो है छोटा मार्ग माना जाता है, 18 किलोमीटर से ज़ायद जो है आपका ये सफ़र होता है। ताहम इस मार्ग पर भी जो है आज वक्फे वक्फे से हल्की से दरमियाना दर्जे की वर्षा होने की संभावना जताई गई है। ताहम प्रशासन द्वारा सभी तीर्थ यात्रियों से यही निवेदन किया गया है कि आप जो है प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते रहे। आप अपना RFID कार्ड पूरी यात्रा के दौरान पहने रखें। RFID कार्ड जो है आपको जगह जगह पर ट्रैक कर पाता है। इसी कार्ड के ज़रिए से जो है आपको ट्रैक किया जाता है। और हाँ, मौसमी सूरत हाल के मद्देनज़र जो है आप अपने साथ गर्म मलबूसात, ऊनी मोज़े, लेसेस वाले शूज़ जो है लगाए रखें, क्योंकि ऊपरी क्षेत्र में जो है आपको बहुत चढ़ाई चढ़नी होती है। लेसेस वाले शूज़ का ही आप उपयोग करें, बिना लेसेस के शूज़ ना लगाए, चप्पल ना लगाए। और महिलाओं के लिए जो है ये ज़रूरी रखा गया है कि वो जो है अपने साथ अम्ब्रेला, विंड चीटर, रेनकोट, वाटरप्रूफ शूज़ और बाकी जो वाटरप्रूफ बैग्स वगैरह जो है वो अपने साथ ज़रूर रखें। और जब भी आप यात्रा के लिए निकलते हैं, कोशिश करें कि आपका मन जो है तैयार रहे इस बात के लिए कि मौसमी सूरत हाल जो है कभी भी बिगड़ सकती है। ऊपरी क्षेत्र में कब मौसम करवट लेगा इस बात का अंदेशा नहीं रहता है। कोशिश करें कि आप जो है अपने साथ इन चीज़ों का पहले ही एहतमाम करें, चाहे आप अम्ब्रेला, विंड चीटर, रेनकोट, वाटरप्रूफ बैग्स, वाटरप्रूफ शूज़ और बाकी जो अन्य चीज़ें हैं वो आप अपने साथ ज़रूर रखें। और कोशिश करें कि आप एक समूह में यात्रा करें, किसी भी शॉर्टकट को इस्तेमाल ना करें, किसी भी शॉर्टकट का प्रयोग ना करें, क्योंकि सरकार द्वारा जो रिस्ट्रिक्टेड एरियाज़ है वहाँ भी ना जाए। कोशिश करें कि एक समूह में यात्रा करें और अपने साथ एक पन्नी रखें जिसमें आप अपना नाम, अपना एड्रेस और मोबाइल फ़ोन रखें। मोबाइल फ़ोन आपको बताते चले कि इस क्षेत्र में जो है आपका पोस्ट पेड मोबाइल ही काम करेगा। जम्मू एंड कश्मीर सर्कल में किसी भी गैर रियासत का जो है प्रीपेड सिम काम नहीं कर पाएगा। कोशिश करें कि आप अपने साथ पोस्ट पेड मोबाइल जो है, पोस्ट पेड सिम जो है वो अपने साथ रखें, ताकि आपको जो है वो काम आए। और एक समूह में यात्रा करें, अपने साथ ज़रूर अपना RFID कार्ड साथ रखें। RFID कार्ड पूरी यात्रा के दौरान पहने रखें, ताकि आपको जो है जगह जगह पर ट्रैक किया जाए। और जैसा कि हम बता चुके हैं कि आपको जो है जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से लेकर पवित्र गुफा तक जगह जगह पर आपको प्रशासन के अधिकारी मिलेंगे, स्थानीय नागरिक मिलेंगे, डॉक्टर्स मिलेंगे, मेडिकल काउंटर्स मिलेंगे, आपको जो है हेल्पलाइन डेस्क्स मिलेंगे, भोजन के जो है बहुत सारे काउंटर्स लगे हुए हैं। गर्ज यही है कि सभी तीर्थ यात्रियों के जो है सुविधा को मुमकिन बनाया जाए और उन्हें किसी भी दुविधा का सामना ना करना पड़े। मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र जो है बहुत सारे वाटरप्रूफ कैंप्स बनाए गए हैं, जहाँ पर आपको रखा जाता है। अगर मौसमी सूरत हाल ख़राब भी हो जाए, आपको जो है चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। आपके लिए जो है बहुत सारी फैसिलिटीज़ रखी गई है, ताकि आपकी जो यात्रा है यादगार रहे, आपकी जो यात्रा है वो सफल, सुखद और मंगलमय रहे। आप बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण के संग। आकाशवाणी क्षण क्षण की सूचनाएं आप तक पहुंचाते रहेगा।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, DTH की आराधना चैनल, आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR तथा आकाशवाणी के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी हम उपलब्ध है। श्रोताओं, श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 का आज 25वां जत्था जो है घाटी की ओर रवाना किया गया। 177 छोटे बड़े वाहनों में 3000 से अधिक तीर्थ यात्री घाटी की ओर राष्ट्रीय राजमार्ग पर इस वक्त चल रहे हैं। कुछ ही घंटों में जो है ये जत्था जो है लांबर ग्राउंड काजीगुंड पहुंच जाएगा। लांबर ग्राउंड काजीगुंड से होते हुए इस जत्थे को जो है इन तीर्थ यात्रियों को जो है इन शिवभक्तों को जो है श्रीनगर ट्रांजिट कैंप पांथा चौक लाया जाएगा, क्योंकि आज जो है सभी तीर्थ यात्री बालटल के मार्ग से ही पवित्र गुफा की ओर रवाना किए जाएंगे। पहलगाम का प्राचीन मार्ग जो है आज तीर्थ यात्रियों के लिए बंद किया गया है। मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र और रोड रिपेयरिंग को मद्देनज़र रखते हुए जो है पहलगाम के प्राचीन मार्ग से तीर्थ यात्रियों को आज पवित्र गुफा की ओर नहीं छोड़ा जाएगा। सभी तीर्थ यात्रियों को जो है आज बालटल के मार्ग से ही पवित्र गुफा की ओर रवाना किया जाएगा। ऊंचे ऊंचे पर्वत, बर्फ़ से ढकी चोटियां, बहती नदियां और शिव भक्तों का जो है अद्भुत वातावरण आप सभी तीर्थ यात्रियों को एक अलग ही आध्यात्मिक संसार में आपको ले जाता है। ये यात्रा जो है श्रोताओं केवल धार्मिक शिक्षा ही नहीं देती है, बल्कि प्रकृति के संरक्षण का संदेश भी देती है। हिमालय की ये पवित्र भूमि जो है हमारी राष्ट्रीय धरोहर है, इसलिए प्रत्येक यात्री का ये कर्तव्य है कि वे पर्यावरण की रक्षा करें, स्वच्छता को बनाए रखें, प्लास्टिक तथा अन्य प्रदूषणकारी वस्तुओं का जो है उपयोग कतई ना करें। कोशिश करें कि आप जो है सफाई का पूरा ख्याल रखें, क्योंकि इस वर्ष जो है ग्रीन यात्रा को जो है ज़्यादा जोर दिया गया है। पूरी यात्रा को जो है ग्रीन यात्रा बनाने की कोशिश की गई है। आपकी सेवा में जो है जगह जगह पर स्थानीय नागरिक और सरकार के जो है अधिकारी आपको मिलेंगे, आपकी सहायता के लिए रखे गए हैं। कोशिश यही है कि सभी तीर्थ यात्रियों की जो यात्रा है वो सफल और सुखद रहे। ताज़ा सूचना के अनुसार जो है अभी तक 300 से ज़ायद अधिक तीर्थ यात्रियों ने जो है पवित्र गुफा पहुँच कर शिव जी के दर्शन प्राप्त किए हैं। आपको बताते चले, मौसम विभाग से मिली ताज़ा सूचना के अनुसार जो है आज राष्ट्रीय राजमार्ग श्रीनगर ट्रांजिट कैंप पाथा चौक और इस रास्ते से जो है गांदरबल रास्ता जो है बालटल का रास्ता जो है इस पूरे रास्ते पर जो है आज वक्फे से हल्के से दरमियाना दर्जे की वर्षा होने की संभावना जताई गई है। आपको बताते चले, आज जो है सुबह 9 बजे तक जो है 363 तीर्थ यात्रियों ने शिव जी के दर्शन प्राप्त किए हैं। पवित्र गुफा पहुँच कर जो है शिवलिंग

संगम के दर्शन प्राप्त किए हैं, जिनमें से कुल मिलाकर 204 पुरुष, 126 महिलाएं, 10 बालक, 2 साधु, 21 सुरक्षाकर्मी शामिल है। कुल मिलाकर 363 तीर्थ यात्रियों ने जो है आज सुबह से पवित्र गुफा पहुंचकर जो है शिव जी के दर्शन प्राप्त किए हैं। आपको याद दिलाते चले, आज श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का 25वां जठा घाटी की ओर सुबह तड़के जो मुख्य भगवती नगर बेस कैंप से पूरे जोश और उत्साह के साथ 177 छोटे बड़े वाहनों में घाटी की ओर रवाना किया गया, और ये सभी तीर्थ यात्री कुछ ही घंटों में जो है लांबर ग्राउंड काजीगुड़ पहुँच जाते हैं। काजीगुड़ में जो है इनका खान पान का बंदोबस्त रहता है और आराम करने के लिए भी बहुत सारी सुविधाएं रखी जाती है, ताकि थके हुए सभी तीर्थ यात्रियों को जो है आराम मुहैया हो। बने रहिए आकाशवाणी की इस विशेष प्रसारण के संग। 9:25 होने को है, कुछ ही क्षणों में समाचार सुनते हैं।

0: वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
0: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम 1 महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा के दौरान धीरे धीरे चलें, विभिन्न स्थानों पर अनिवार्य विश्राम करें और एक समान गति सुनिश्चित करें। खाली पेट यात्रा ना करें और निर्जलीकरण और सिर दर्द से निपटने के लिए ढेर सारा पानी पिएं।
0: यात्रा के दौरान अपने साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन अवश्य लाएं, क्योंकि सांस लेने में कठिनाई होने पर ये सहायक होता है। यात्रियों को यात्रा के दौरान पोस्ट पेड सिम ले जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गैर जम्मू कश्मीर सर्कल का प्री पेड सिम जम्मू कश्मीर में काम नहीं करेगा।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
0: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम 1 महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा के दौरान धीरे धीरे चलें, विभिन्न स्थानों पर अनिवार्य विश्राम करें और एक समान गति सुनिश्चित करें। खाली पेट यात्रा ना करें और निर्जलीकरण और सिर दर्द से निपटने के लिए ढेर सारा पानी पिएं।
0: यात्रा के दौरान अपने साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन अवश्य लाएं, क्योंकि सांस लेने में कठिनाई होने पर ये सहायक होता है। यात्रियों को यात्रा के दौरान पोस्टपेड सिम ले जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गैर जम्मू कश्मीर सर्कल का प्रीपेड सिम जम्मू कश्मीर में काम नहीं करेगा।

0: श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़, डीटीएच की आराधना चैनल, आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर तथा आकाशवाणी के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी आप हमें सुन पा रहे हैं। श्रोता, इस वक्त हमारे साथ गांधरबल से हमारे संवाददाता रहीम रिजवान फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। क्या कुछ ताज़ा अपडेट्स उनके पास, आइए सुनते हैं। रिजवान, स्वागत करते हैं आपका इस विशेष प्रसारण में।
1: बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी।
0: जी
1: जी, यात्रा के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो आज बादल मुख्य मार्ग से यात्रा जो है वो सुचारू रूप से जारी है और पवित्र गुफा की तरफ यात्री जो है देश के विभिन्न भागों से आने वाले श्रद्धालु जो है वो पवित्र गुफा की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। हालांकि अगर मौसम की स्थिति के बारे में हम बात करेंगे तो बादल के पूरे क्षेत्र में आज आकाश पे बादल छाए हुए हैं, मौसम अबर आलूद है और हल्की हल्की वर्षा भी हो रही है और इस वक्त गांधरबल जिले में भारी वर्षा हो रही है जिससे सैलाबी सूरत हाल चारों ओर पैदा हुई है। लेकिन बालतल के पूरे क्षेत्र में जैसे कि हम बार बार अपने श्रोताओं को बताते हैं कि यहाँ का मौसम जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, कभी वर्षा होती है कभी धूप खिलती है, तो इस तरह हम कह सकते हैं आज का वातावरण जो है वो बिल्कुल ठीक है। अब आकाश पे बादल छाए हुए हैं और जो यात्री है वो पवित्र गुफा की ओर जा रहे हैं। तो सरकारी आंकड़ों के अनुसार आज 1833 श्रद्धालुओं को पवित्र गुफा की ओर जाने की अनुमति दी गई है। पवित्र गुफा जाने वाले इन श्रद्धालुओं में 1392 पुरुष, 2236 महिलाएं, 71 बालक बालिका, 13 साधु, 8 साधियां और 113 सुरक्षा कर्मी भी शामिल हैं। बम बम बोले हर हर महादेव का पवित्र नाद करते हुए ये श्रद्धालु जोश और जज्बे के साथ गुफा की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तो अगर हम व्यवस्थाओं के हवाले से बात करेंगे तो जिला प्रशासन गांधरबल ने यात्रा रूट के हर पड़ाव पर यात्रियों की सहायता के लिए उच्च स्तर की सुविधाएं उपलब्ध रखी हैं जिसको लेकर यात्री संतोष व्यक्त कर रहे हैं। तो सिक्योरिटी के भी इस दौरान कड़े प्रबंध किए गए हैं। न सिर्फ राष्ट्र जो श्रीनगर कारगिल राजमार्ग है इसके हर पड़ाव पर चारों ओर सुरक्षा कर्मी चाको चौबंद नजर आ रहे हैं। तो इधर जो ट्रांजिट कम मणिगाम है और ट्रांजिट कम शादीपोरा है वहां भी शाम 5 बजे के बाद यात्री जो है उनको आगे जाने की अनुमति नहीं दी जाती है। तो इस तरह इन यात्रियों को भी रात भर या तो ट्रांजिट कम मणिगाम या ट्रांजिट कम शादीपोरा में रुकना पड़ता है जहां प्रशासन ने उनके लिए उच्च स्तर की सुविधाएं उपलब्ध रखी है। जी
0: बहुत बहुत धन्यवाद रिजवान, विस्तार में जानकारी देने के लिए
1: धन्यवाद आपका।
0: श्रोताओ, ये थे रहीम रिजवान, गांधरबल से अपडेट दे रहे थे, मौसमी सूरत हाल बता रहे थे कि किस तरह से जो है गांधरबल में इस वक्त भारी वर्षा हो रही है। ताहम बालतल के मार्ग से जो है धूमिल से जो है इस वक्त सभी तीर्थ यात्री पूरे उत्साह और जोश के साथ जो है पवित्र गुफा की ओर रवा दवा है।

और जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, आज जो है सभी तीर्थ यात्री बालतल के मार्ग से ही पवित्र गुफा की ओर रवाना किए जाएंगे, क्योंकि पहलगाम का प्राचीन मार्ग जो है फिलहाल बंद है। तो आज जो 25वां जत्था घाटी की ओर रवाना किया गया, कुछ ही घंटों में वो काजीगुंड लांबर ग्राउंड पहुंचने वाला है, और इन सभी तीर्थ यात्रियों को जो है आज

बयान दर्जे की वर्षा होने की संभावना जताई गई है। ताहम प्रशासन द्वारा जो है सभी तीर्थ यात्रियों के लिए उच्च स्तर के इंतजाम किए गए हैं ताकि सभी तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा, सभी तीर्थ यात्रियों की सेहत और उनकी आसाइश का जो है ख्याल रखा जाए। ताहम तीर्थ यात्रियों से भी यही गुजारिश, यही निवेदन कि आप जो है प्रशासन द्वारा दिए गए सभी दिशा निर्देशों का पालन करते रहे ताकि आपकी जो पूरी यात्रा है वो सफल, सुखद और मंगलमय हो और एक यादगार लेकर आप वादी से जाए। दोस्तों, मौसम विभाग से मिली ताज़ा सूचना के अनुसार जो है आज दिन भर जो है हल्के से दरमियाना दर्जे की वर्षा होने की संभावना जताई गई है। तो आप सभी तीर्थ यात्रियों से यही निवेदन कि आप जो है उन्हीं मोज़े, गर्म मलबूसात, अम्ब्रेला, वाटरप्रूफ बैग्स, विंड चीटर्स और बाकी जो अन्य चीज़ें हैं वो अपने साथ ज़रूर रखें ताकि ऊपरी क्षेत्र में जो है मौसमी सूरत हाल से आप परेशान ना हो, बारिश से आप परेशान ना हो, वर्षा से आप परेशान ना हो। आप इन चीज़ों का पहले ही जो है इंतज़ाम करें ताकि इससे जो है आपकी यात्रा है वो आसानी से पूरी हो पाए और आप जो है पवित्र गुफा पहुँच कर शिव जी के दर्शन प्राप्त करने में सफल रहे। शिव जी से हमारी यही प्रार्थना कि सभी तीर्थ यात्रियों की यात्रा सफल और प्रसन्न रहे। श्रोता, हम आपको बताते चले कि आप जो है हमारे साथ सक्रिय रूप से जुड़ सकते हैं। हम आपको हमारे साथ सक्रिय रूप से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आप बेझिझक अपने अनुभव, विचार और प्रश्न जो है हमारी टीम के साथ साझा कर सकते हैं हमारे समर्पित हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से। हमारा मात्र एक हेल्पलाइन नंबर है 9596990954। नंबर मैं एक बार फिर दोहराता हूँ, हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9596990954। और अन्य जो प्रश्न है आपके और आपको किसी भी किस्म की हेल्प की ज़रूरत है तो आप जो है प्रशासन द्वारा दिए गए टोल फ्री नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर कुछ इस तरह से है 1800180719, 1800180719। नंबर एक बार फिर सुने, ये प्रशासन द्वारा दिया गया हेल्पलाइन नंबर है। किसी भी किस्म की आपको इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, मदद चाहिए होगी, कोई भी प्रश्न हो, अनुभव है, आप इन नंबर्स पर जो है राबिता कायम कर सकते हैं। नंबर एक बार फिर सुने, हेल्पलाइन नंबर है 1800180719, 1800180719। आप इन नंबर्स पर जो है किसी भी किस्म की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सभी तीर्थ यात्रियों से यही गुजारिश कि आप जो है अपना RFID कार्ड पहने रखें। RFID कार्ड को जो है आप इसी कार्ड के ज़रिए से जो है जगह जगह पर ट्रैक होते हैं और किसी भी किस्म की आपको दुविधा का सामना हो आप जो है नज़दीकी हेल्पलाइन काउंटर्स पर जाकर जो है उनसे राबता कायम करें और बेझिझक जो है आप उनसे बात करें, उनसे मशवरा करें ताकि आपकी जो यात्रा है, यात्रा के दौरान आपको किसी भी किस्म की दुविधा का सामना हो वो जल्द से जल्द दूर हो जाए और आप जो है अच्छे से ये यात्रा कर पाए। और कोशिश करें कि जब भी आप यात्रा के लिए दुमेल से होते हुए निकलते हैं तो आप पहले ही कोशिश करें कि अगर आप की तबीयत ठीक है, आप अगर आपका सेहत ठीक है तभी आप ऊपरी क्षेत्र में जाए, क्योंकि ऊपरी क्षेत्र में जो है आपको ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। कोशिश करें कि पहले ही आप जो है दिए कंसर्न जो मेडिकल काउंटर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, आप उनसे राबता कायम करें, उनसे जो है अपनी जांच करवाएं, उसके बाद ही आप ऊपरी क्षेत्र का जो सफ़र है वो तय करें। आप बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण के संग। आकाशवाणी क्षण क्षण की सूचनाएँ आप तक पहुँचाते रहेगा।

0: पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: आपको अकेले ट्रैक नहीं करना चाहिए, हमेशा एक समूह में यात्रा करें और सुनिश्चित करें कि समूह में शामिल सभी लोग आपके सामने या पीछे चल रहे हैं, हमेशा आपकी दृष्टि में रहें, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप उनसे अलग ना हों।
0: किसी भी आपात स्थिति में

0: तत्काल कार्रवाई की जाए, इसके लिए आपको अपने समूह के किसी सदस्य जिसके साथ आप यात्रा कर रहे हैं का नाम, पता और मोबाइल टेलीफोन नंबर का एक नोट अपनी जेब में जरूर रखें। साथ ही अपना यात्रा परमिट या कोई और पहचान पत्र भी अपने साथ रखें। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा के दौरान धीरे धीरे चलें, विभिन्न स्थानों पर अनिवार्य विश्राम करें और एक समान गति सुनिश्चित करें। खाली पेट यात्रा ना करें और निर्जलीकरण और सिर दर्द से निपटने के लिए ढेर सारा पानी पिएं।
0: यात्रा के दौरान अपने साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन अवश्य लाएं, क्योंकि सांस लेने में कठिनाई होने पर ये सहायक होता है। यात्रियों को यात्रा के दौरान पोस्टपेड सिम ले जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गैर जम्मू कश्मीर सर्कल का प्रीपेड सिम जम्मू कश्मीर में काम नहीं करेगा।
2: श्री अमरनाथ यात्रा 2024 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz, पहलगाम के प्राचीन मार्ग पर आप हमें FM पहलगाम 100.1 MHz, DTH की आराधना सर्विस, आकाशवाणी की मोबाइल ऐप, न्यूज़ ऑन AIR तथा आकाशवाणी के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी हम उपलब्ध हैं। श्रोता, आपको बताते चले, इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता इमरान नाइको पांथा चौक ट्रांजिट कैंप से जुड़ चुके हैं। क्या कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स इनके पास, आइए सुनते हैं। इमरान, स्वागत करते हैं आपका।
3: जी, बहुत शुक्रिया। अभी चूंकि हम देख रहे हैं कि अमरनाथ जी यात्रा जारी है और आज भी श्रीनगर के पांथा चौक ट्रांजिट कैंप से श्री अमरनाथ जी यात्रियों का जो एक जत्था है वो यहां से बालतल की तरफ रवाना किया गया है, जिसमें मेल, फीमेल, कुछ बच्चे, साधु साध्वी शामिल थे। और ये वो यात्री हैं जो कल श्रीनगर पहुंचे थे और इसमें कुछ परसों से भी यात्री रुके थे यहाँ पे, और आज सुबह इन यात्रियों को अमरनाथ जी गुफा के लिए रवाना किया गया है। जो सोनबर्ग बालतल जो रास्ता है वहीं से हैवी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट के बीच में। इसके अलावा मजीद यहाँ कई सारे यात्रीज हैं और उन्हें भी यहाँ से जो है यात्रा के लिए रवाना किया जाएगा। और ओवरऑल जो अमरनाथ जी यात्रीज यहाँ पहुँच रहे हैं उनके लिए यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से या प्रशासन की तरफ से सारी सुविधाएं रखी गई है, क्योंकि ये बड़ा इम्पोर्टेंट ट्रांजिट कैंप है श्रीनगर सिटी का, जो कि पांथा चौक एरिया में कायम किया गया है। और इस ट्रांजिट कैंप में हम देख रहे हैं कि जैसे कि हम बार बार या पहले दिन से अपडेट कर रहे हैं कि यात्रियों के लिए हर तरह की यहाँ सुविधाएं रखी गई है। और चूंकि कई टाइम से मौसम की खराबी की होने की वजह से यात्रा डिस्टर्ब भी हुई, लेकिन इस सब के बावजूद भी हम देख रहे हैं कि इस ट्रांजिट कैंप में यात्रियों को किसी तरह की कोई मुश्किल नहीं हो रही है या कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और प्रशासन की तरफ से भी, चाहे वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो, या फिर श्राइन बोर्ड हो, या फिर यहाँ जो लोकल्स हैं वो अपनी जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि अपनी खिदमात जो है वो अंजाम दे रहे हैं, और ताकि यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा हेल्प डेस्क, जैसे कि हम बार बार कह रहे हैं कि यहाँ यात्रियों के लिए रखा गया है, अगर किसी यात्री को कोई दिक्कत हो या किसी तरह की कोई असिस्टेंस या मदद की ज़रूरत हो, सो वो इस हेल्प डेस्क पे अपनी जो है हासिल कर सकता है वो असिस्टेंस या हेल्प। इसके अलावा यहाँ लोक भवन श्रीनगर में भी यहाँ 24/7 जो मॉनिटरिंग सेल कायम किया गया है श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की तरफ से, उसके जरिए भी अमरनाथ जी यात्रा को मॉनिटर किया जा रहा है। और जो कमांड कंट्रोल सेंटर है HMT में, वहाँ से भी पूरी यात्रा को जो है मॉनिटर किया जा रहा है, या वेदर जो है वो उसको लेके भी सारी सिचुएशन को मॉनिटर किया जा रहा है और अपडेट भी किया जा रहा है। और खासकर कहीं किसी यात्री को कोई दिक्कत ना हो तो उस चीज को पूरी तरह से यहाँ से अराउंड क्लॉक या 24/7 हम यूं कहें कि मॉनिटर किया जा रहा है। सो ओवरऑल हम देख रहे हैं कि अमरनाथ जी यात्रा अभी जारी है और उम्मीद की जा रही है कि मौसम भी साजगार हो, मौसम भी साफ सुहाना हो, ताकि यात्री अच्छी तरीके से अपनी यात्रा जो है मुकम्मल कर सके। जहां तक आज मौसम का ताल्लुक है, श्रीनगर में आज सुबह सवेरे काफी तेज बारिश हो रही थी, लगभग 2-2.5 घंटे तक मुसलसल तेज बारिश हुई, हैवी रेनफॉल। लेकिन अच्छी खबर ये इस वक्त है कि अब मौसम में बेहतरी आनी शुरू हुई है, हल्की सी धूप भी निकली है और बारिश भी मुकम्मल तौर पर रुक चुकी है। और मौसम विभाग की भी ये प्रेडिक्शन है कि जैसे उन्होंने पहले ही से कहा था कि 2 जुलाई तक कश्मीर के कुछ हिस्सों में बारिशें होंगी, कहीं मौसम

0: खराब होगा, कहीं बादल होंगे, कहीं धूप खिलेगी। तो इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि क्योंकि श्रावण का मौसम भी है तो इसमें इस तरीके की बारिशें अक्सर होती रहती है, और ये एज यूजुअल है इस मौसम का, इस तरीके का देखना या रहना। लेकिन इस वक्त मौसम बिल्कुल सुहाना होता हुआ श्रीनगर में नजर आता आ रहा है, और हल्की सी इस वक्त धूप छाई हुई है और बारिश बिल्कुल रुक चुकी है। और यहाँ से अमरनाथ जी यात्रियों को पवित्र गुफा के दर्शन के लिए रवाना किया गया है, जो कि अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में सालाना जो श्री अमरनाथ जी यात्रा की छड़ी मुबारक है वो भी अभी कश्मीर में ही है, और यहाँ श्रीनगर के अलग अलग जगहों पर उस के दर्शन के लिए उसे लिया जाएगा, जैसे कि दशनमी अखाड़ा मंदिर, शंकराचार्य मंदिर और भी दो तीन जगहों पर। और उस हवाले से भी जो है यात्रा उसका इंतजार करें, क्योंकि उसका शेड्यूल भी पहले से ही जारी किया गया है। तो फिलहाल मौसम भी साजगार है और यात्रियों को यहां से रवाना भी किया गया है और यात्रा अभी हो रही है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद इमरान। श्रोता, ये थे इमरान नाइक को पांथा चौक ट्रांजिट कैंप से अपडेट दे रहे थे, जिसके बता रहे थे कि मौसम जो है अभी श्रीनगर में खुशगवार है, हल्की धूप देखने को मिल रही है। वहीं हमें मिली ताज़ा सूचना के अनुसार जो है अभी तक पवित्र गुफा पहुंचकर जो है 647 तीर्थयात्रियों ने शिवजी के दर्शन प्राप्त किए हैं सुबह से, जिनमें से 364 पुरुष, 220 महिलाएँ, 15 बालक, 3 साधु, 1 साध्वी, 44 सुरक्षाकर्मी शामिल है। कुल मिलाकर 600 से अधिक तीर्थयात्रियों ने जो है अभी तक पवित्र गुफा पहुंचकर शिवजी के दर्शन प्राप्त किए हैं। आकाशवाणी क्षण क्षण की सूचनाएं आप तक पहुंचाते रहेगा, आप बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण के संग।

0: पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है। सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
0: यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम, वैसलीन या सनस्क्रीन साथ रखें। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: आपको अकेले ट्रैक नहीं करना चाहिए, हमेशा एक समूह में यात्रा करें और सुनिश्चित करें कि समूह में शामिल सभी लोग आपके सामने या पीछे चल रहे हैं, हमेशा आपकी दृष्टि में रहें, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप उनसे अलग ना हों।
0: किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जाए, इसके लिए आपको अपने समूह के किसी सदस्य जिसके साथ आप यात्रा कर रहे हैं का नाम, पता और मोबाइल टेलीफोन नंबर का एक नोट अपनी जेब में जरूर रखें।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़। पहलगाम के प्राचीन मार्ग पर आप हमें एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़, डीटीएच की आराधना सर्विस, आकाशवाणी की मोबाइल ऐप, न्यूज़ ऑन एयर तथा आकाशवाणी के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी हम उपलब्ध हैं। श्रोताओं, आपको याद दिलाते चले, ताज़ा सूचना के अनुसार जो है अभी तक 600 से अधिक तीर्थयात्रियों ने आज पवित्र गुफा पहुंचकर शिव जी के दर्शन प्राप्त किए हैं। वही मौसम की अगर बात करें तो आज जो है मौसम विभाग से मिली ताज़ा सूचना के अनुसार जो है कई एक जगहों पर वक्फे से हल्के से दर

दर्जे के वर्षा होने की संभावना जताई गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें या बाल्टल रूट की बात करें तो दोनों मार्गों पर जो है आज हल्की से दरमियाना दर्जे की वर्षा होने की संभावना जताई गई है। ताहम सभी तीर्थ यात्री सभी शिव भक्त जो है पूरी आस्था और जोश के साथ जो है रवा दवा है। आपको याद दिलाते चले, आज तड़के जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का 25वां जत्था जो है घाटी की ओर रवाना किया गया। 177 छोटे बड़े वाहनों में कुल मिलाकर 3000 से अधिक तीर्थ यात्री घाटी की ओर रवाना किए गए, जिनमें से 3098 पुरुष, 673 महिलाएं, 5 बालक, 87 साधु, 22 साध्वी, 1 साधु बालक शामिल है। कुल मिलाकर 3886 तीर्थ यात्री 177 छोटे बड़े वाहनों में राष्ट्रीय राजमार्ग पर इस वक्त रवा दवा है। कुछ ही वक्त बाद जो है ये जत्था काजीगुंड लांबर ग्राउंड पहुंच जाएगा। काजीगुंड के बाद जो है इस जत्थे को श्रीनगर ट्रांजिट कैंप पांथा चौक पहुंचाया जाएगा, क्योंकि आज सभी तीर्थ यात्रियों को जो है बालतल के मार्ग से ही पवित्र गुफा की ओर रवाना किया जाएगा, पवित्र गुफा की ओर छोड़ा जाएगा, क्योंकि पहलगाम का प्राचीन मार्ग जो है आज बंद रहेगा। मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र और रोड रिपेयरिंग को मद्देनज़र रखते हुए जो है आज प्रशासन ने ये फैसला किया है कि पहलगाम का प्राचीन मार्ग जो है आज तीर्थ यात्रियों के लिए बंद रहेगा। वही आज या कल से जो रुके हुए तीर्थ यात्री थे, सभी तीर्थ यात्री एक साथ जो है आज बालटल के मार्ग से पवित्र गुफा की ओर रवाना किए जाएंगे। ताज़ा सूचना के अनुसार जो है अभी तक 600 से अधिक तीर्थ यात्रियों ने शिव जी के दर्शन प्राप्त किए हैं। श्रोताओं, श्री अमरनाथ जी यात्रा जो है इस वक्त पूरे जोश और उत्साह के साथ जारी है। इस वर्ष भी जो है यात्रा को सफल और सुरक्षा बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए इकदाम से जो है सभी तीर्थ यात्री बेहद प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। स्थानीय प्रशासन, स्थानीय नागरिक एक साथ मिलकर जो है इस बात को यकीनी बनाने में जुटे हुए हैं कि सभी तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और सुविधाओं का जो है विशेष ध्यान रखा जाए। हर वर्ष की तरह RFID ट्रैकिंग, हेल्पलाइन सर्विसेज और अन्य डिजिटल सुविधाएं जो है तीर्थ यात्रियों के लिए जगह जगह पर उपलब्ध रखी गई है। और प्रशासन की यही मुसलसल कोशिश है कि जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से लेकर पवित्र गुफा तक जो है जगह जगह पर तीर्थ यात्रियों की सेवा में लगे रहे, तीर्थ यात्रियों की इस यात्रा को जो है यादगार बनाने की कोशिश रहे। वो खूबसूरत यादें, वो खूबसूरत पल जो है सभी शिव भक्त अपने साथ ले जाए। और स्थानीय नागरिक की अगर बात करें, स्थानीय नागरिकों की अगर बात करें तो वो जो है प्रशासन के साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर हाथ में हाथ देकर जो है सभी तीर्थ यात्रियों की सेवा में जो 200 घंटे लगे हुए हैं, और कोशिश यही है कि सभी तीर्थ यात्री जो मेहमान यहाँ पर आए हुए हैं उनकी मेहमान नवाजी की जाए और उनकी जो यात्रा है उन्हें उनकी इस यात्रा का जो है यादगार बनाया जाए। आकाशवाणी की भी यही कोशिश है कि आपकी सेवा में हम लगे हुए हैं, आपके जो है क्षण क्षण की सूचनाएं हम आप तक पहुंचा रहे हैं ताकि आप जो है अपडेट रहे। और एक बार फिर आप सभी तीर्थ यात्रियों से यही गुजारिश करेंगे, यही निवेदन करेंगे कि आप जो है सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करते रहे ताकि आपकी यात्रा जो है सफल और सुरक्षा में जो है मुमकिन हो पाए। और जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, मौसम विभाग से मिली ताज़ा सूचना के अनुसार जो है आज मौसम अबर आलू ही रहेगा और हल्की से दरमियाना दर्जे की वर्षा होने की संभावना जताई गई है। तो सभी तीर्थ यात्रियों से यही निवेदन कि आप जो है अपने साथ गर्म मलबूसात, उन्हीं मोज़े और वाटरप्रूफ बैग्स, अम्ब्रेलाज, विंड चीटर्स, लेसेस वाले शूज़ का उपयोग करें और वाटरप्रूफ बैग्स भी अपने साथ लें जिसमें आप अपना खाने पीने की चीज़ें जो है वो आप वाटरप्रूफ बैग्स में रखें, क्योंकि ऊपरी क्षेत्र में कब वर्षा होगी इस बात का अंदेशा जो है नहीं रहता है। और कोशिश करके जो भी सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देश उनका आप मुसलसल पालन करते रहे। चाहे आप RFID की बात करें, RFID कार्ड जो है आप मुसलसल यात्रा के दौरान पहने रखें, क्योंकि इस RFID कार्ड के ज़रिए जो है आपको जगह जगह पर ट्रैक किया जाता है। और कोशिश करें कि एक समूह में यात्रा करें, सरकार द्वारा चिन्हित जगहों पर ना जाए, किसी भी शॉर्टकट को इस्तेमाल ना करें, कोशिश करें एक समूह में यात्रा करें और अपने साथ एक पन्नी रखें। उसमें आप उस पन्नी पर जो है आप अपना नाम, अपना एड्रेस और अपना फ़ोन नंबर ज़रूर लिखें ताकि आपको जो है जल्दी ट्रैक किया जाए। और जो ही आप ट्रैक किए जाते हैं उस ट्रैक के दौरान जो है
आईडी कार्ड जो है आरएफआईडी कार्ड आपको बहुत सहायता देता है इस बीच। और कोशिश करें कि सरकार द्वारा दिए गए निर्देश

आपका जो है आप मुसलसल पालन करते रहे, और इस यात्रा को यादगार बनाने के लिए आकाशवाणी क्षण क्षण आपके साथ है। क्षण क्षण की सूचनाएँ अब तक पहुँचाते रहेंगे। आप बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण के संग।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
0: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम एक महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
0: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम 1 महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है। सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
0: यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम, वैसलीन या सनस्क्रीन साथ रखें। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: आपको अकेले ट्रैक नहीं करना चाहिए, हमेशा एक समूह में यात्रा करें और सुनिश्चित करें कि समूह में शामिल सभी लोग आपके सामने या पीछे चल रहे हैं। हमेशा आपकी दृष्टि में रहें, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप उनसे अलग ना हों।
0: किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जाए, इसके लिए आपको अपने समूह के किसी सदस्य जिसके साथ आप यात्रा कर रहे हैं का नाम, पता और मोबाइल टेलीफोन नंबर का एक नोट अपनी जेब में जरूर रखें। साथ ही अपना यात्रा परमिट या कोई और पहचान पत्र भी अपने साथ रखें।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, DTH की आराधना सर्विस, आकाशवाणी की मोबाइल ऐप, न्यूज़ ऑन AIR तथा आकाशवाणी के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी आप हमें सुन पा रहे हैं। श्रोताओं, आपको याद दिलाते चले, श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 का आज 25वां जत्था घाटी की ओर रवाना किया गया। 177 छोटे बड़े वाहनों में 3000 से अधिक तीर्थ यात्री घाटी की ओर इस वक्त रवाना दवा है। कुछ ही वक्त में जो है तीर्थ यात्री लांबर ग्राउंड काजीगुंड पहुंच जाएंगे। आज सभी तीर्थ यात्री बालतल के मार्ग से शिव जी के दर्शन प्राप्त करेंगे। सभी तीर्थ यात्रियों में रुके पड़े तीर्थ यात्री सुबह जो तड़के जो मुख्य भगवती नगर बेस कैंप से तीर्थ यात्री घाटी की ओर रवाना किए गए, सभी तीर्थ यात्री एक साथ मिलकर जो है आज एक ही मार्ग से यानी बालतल मार्ग से पवित्र गुफा की ओर रवाना किए जाएंगे। मौसम की अगर बात करें तो इस वक्त जो है मौसम अभी खिली खिली धूप देखने को मिल रही है। बालतल के मार्ग पर जो है मौसम अबर आलूद ही रहेगा। वक्फे वक्फे से जो है हल्की वर्षा होने की भी संभावना जताई गई है। ताहम सभी तीर्थ यात्री इस वक्त पूरे जोश और उत्साह के साथ पवित्र गुफा की ओर रवा दवा है। और हमें मिली ताज़ा सूचना के अनुसार जो है अभी तक 600 से अधिक तीर्थ यात्रियों ने शिवजी के दर्शन प्राप्त किए हैं। पवित्र गुफा पहुँच कर जो है शिवजी के दर्शन प्राप्त किए हैं। आपको बताते चले, आज जो है सभी तीर्थ यात्री बालतल के मार्ग से ही पवित्र गुफा की ओर रवाना किए जाएंगे, क्योंकि पहलगाम के प्राचीन

तीन मार्ग से जो है आज मौसम को मद्देनज़र रखते हुए और बाकी जो है रिपेयरिंग को मद्देनज़र रखते हुए आज पहलगाम का प्राचीन मार्ग जो है तीर्थ यात्रियों के लिए बंद रखा गया है। वहीं बालतल के मार्ग से जो है आज सभी तीर्थ यात्रियों को पवित्र गुफा की ओर रवाना किया जाएगा। सभी तीर्थ यात्री जो है प्रशासन द्वारा उठाए गए इकदाम से बड़े ही खुश और प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। स्थानीय नागरिक और स्थानीय प्रशासन जो है एक साथ मिलकर इस बात को यकीनी बनाने में जुटे हुए हैं कि सभी तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा जो है उनकी स्वास्थ्य और सुविधाओं का जो है विशेष ध्यान रखा जाए। हर वर्ष की तरह जो है जगह जगह पर आपको सुविधाएं मिलेंगी और कोशिश यही है कि सभी तीर्थ यात्रियों की जो यात्रा है यादगार रहे और वो ये यादगार लम्हे अपने साथ ले जाए। आकाशवाणी क्षण क्षण की सूचनाएँ आप तक पहुँचाते रहेगा, बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण के संग।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है। सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
0: यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम, वैसलीन या सनस्क्रीन साथ रखें। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
0: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम 1 महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम बालतल, एफएम पहलगाम, आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एयर तथा आकाशवाणी के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स के अलावा आप हमें आकाशवाणी के यूट्यूब चैनल आराधना पर भी सुन पा रहे हैं। श्रोताओं, श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 पूरे उत्साह के साथ इस वक्त जारी है। हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों के साथ यात्रा जो है इस वक्त बालतल के मार्ग पर जारी है। सभी तीर्थ यात्री खुश और प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। श्री अमरनाथ यात्रा के दौरान जो है वादी का पूरा वातावरण भक्ति और उत्साह से भर जाता है। श्रोताओं, स्थानीय लोग, सुरक्षा बल, स्वयंसेवी संस्थाएं और लंगर समितियां जो है मिलकर आप सभी तीर्थ यात्रियों की सेवा में दिन रात लगे रहते हैं। निशुल्क भोजन, चिकित्सा सुविधा, विश्राम स्थल और अन्य आवश्यक सहायता जो है यात्रा को और भी सुविधाजनक बनाती है। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के प्रबंधन में यात्रा का सफल आयोजन किया जाता है। पंजीकरण, स्वास्थ्य जांच और सुरक्षा व्यवस्था पर जो है विशेष ध्यान दिया जाता है ताकि हर यात्री अपनी यात्रा को जो है सुरक्षित और सुखद रूप से पूरा कर सके। यात्रा के दौरान प्रकृति की सुंदरता जो है हर कदम पर आप सभी तीर्थ यात्रियों को मोहित कर देती है। बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ, हरे भरे मैदान, बहती हुई नदियाँ और ठंडी हवा का एहसास जो है शिव भक्तों के मन को आध्यात्मिक शांति से भर देता है। ये यात्रा सिर्फ शारीरिक सफर ही नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि और भक्ति का भी एक अनोखा अनुभव है। श्रोताओं, पवित्र यात्रा के दौरान आप पर भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जिन्हें आपको निभानी होगी। प्रकृति की सुरक्षा हम सब की जिम्मेदारी है, उसका हमें ध्यान रखना होगा ताकि हम इस पवित्र भूमि को साफ रख पाए। यात्रा के दौरान जो है हमारी यात्रा पवित्र रहे और ये यादगार लम्हात जो है हम अपने साथ वापस ले जाए। आकाशवाणी की भी मुसलसल यही कोशिश है कि आपकी इस पूरी यात्रा को जो है हम यादगार बनाए, क्षण क्षण की सूचनाएं आप तक पहुंचाए, अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहते हैं। विभिन्न हिस्सों से हमारे साथ जो है हमारे संवाददाता जुट जाते हैं।

जो आपको लाइव रिपोर्टिंग देते हैं, ताकि आप जो है अपडेट रहे और सरकार के द्वारा जो निर्देश आते हैं, प्रशासन द्वारा जो दिशा निर्देश आते हैं, उनको हम आप तक पहुंचाते हैं। कोशिश यही होती है कि आपकी जो यात्रा है वो सफल और सुरक्षित तरीके से मुकम्मल हो पाए। आकाशवाणी क्षण क्षण की सूचनाएं आप तक पहुंचाते रहेगा। आप बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण के संग।

श्री अमरनाथ यात्रा 2024 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम बालतल, एफएम पहलगाम, आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआर, डीटीएच की आराधना चैनल, आकाशवाणी की ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी आप हमें सुन पा रहे हैं। श्रोताओं, दिन के 12 बजने वाले हैं, चंद ही लम्हों में हम समाचार सुन पाएंगे।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रखना ही इस अभियान का उद्देश्य है।
1: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे।

0: की बड़ी भूमिका है।
1: नशे की लत के खिलाफ 100 सप्ताह के इस अभियान में देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा भाग लेंगे। माय भारत वॉलंटियर्स, यूथ क्लब, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संगठन, उद्योग संगठनों और 125 से ज्यादा आध्यात्मिक संगठनों के प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से जुड़ेंगे। अभियान के अंतर्गत हर रविवार को नशा उन्मूलन के लिए जागरूकता गतिविधियां चलाई जाएंगी। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय स्नातकोत्तर पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट पीजी 2026 की तैयारियों की कल समीक्षा की। बैठक के दौरान परीक्षा का सुचारू, सुरक्षित, पारदर्शी और उन्नत प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचालन सुनिश्चित किए जाने पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। ये परीक्षा इस महीने की 30 तारीख को आयोजित की जाएगी। श्री नड्डा ने उम्मीदवारों से कहा कि वो अफवाहों से दूर रहें और केवल NBEMS और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा रखें। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सैदो बख्तियार ओदिलोविच आज से 4 दिवसीय भारत यात्रा पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि यात्रा के दौरान वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात करेंगे, साथ ही विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री नई दिल्ली में आयोजित एक व्यापार मंच में भी भाग लेंगे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों, व्यापार और निवेश समेत विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से ओडिशा के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्त पानी में शैक्षिक, सांस्कृतिक और अन्य कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। राष्ट्रपति कल कटक में जगत गुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन भी करेंगी। मंगलवार को वे दक्षिण ओडिशा में तप्त पानी के पास माँ कांधुनी देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। गुजरात, ओडिशा और केरलम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। ओडिशा में महानदी बेसिन में नदियों का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा गहरा गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि गुजरात में मौसम विभाग ने आज 6 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। उधर केरलम में जारी तेज बारिश से कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने आज तिरुवनंतपुरम और कोल्लम को छोड़कर राज्य के 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के 10वें दिन 4 अलग अलग स्पर्धाओं में 16 पदक जीतकर भारत पदक तालिका में 4थे स्थान पर पहुंच गया। भारत ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीते हैं। सर्वाधिक 10 पदक मुक्केबाजी से आए हैं। खेलों के समापन समारोह के दौरान आज देर रात अहमदाबाद को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रमंडल खेल ध्वज और होस्ट बैटन सौंपा जाएगा। इस अवसर के साथ ही अहमदाबाद 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की जिम्मेदारी संभाल लेगा। अहमदाबाद में होने वाले 2030 के राष्ट्रमंडल खेल इस बहुखेल प्रतियोगिता के शताब्दी वर्ष का प्रतीक होंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया आज नई दिल्ली में संडे ऑन साइकिल के 84वें संस्करण में शामिल हुए। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में छात्रों, फिटनेस प्रेमियों, साइकिल चालकों, परिवारों और एनसीसी के युवा कैडेट्स ने नशा मुक्त भारत अभियान के समर्थन में हिस्सा लिया। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
3: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे।
4: The nation's youth must be physically fit, mentally strong and full of self-confidence. Speaking on the launch of the Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan virtually in New Delhi today, Mr. Modi said, young people should always stay away from drugs and embrace a healthy lifestyle.
5: Aaj hum sabhi jis abhiyan ke sakshi ban rahe hain, wo abhiyan vyakti ke liye hai, parivar ke liye hai, samaj ke liye bhi hai. और सबसे बड़ी बात है ये राष्ट्र के लिए है। आज जब देश ने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है तो इसके लिए आवश्यक है। देश का युवा

विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz पर, FM पहलगाम 100.1 MHz पर, न्यूज़ ऑन एयर के आराधना चैनल DTH और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी हम उपलब्ध हैं। मैं आपकी उद्घोष का पजमा फेरोज़ आपकी सेवा में उपस्थित रहूंगी अभी से लेकर शाम 6 बजे तक।

103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आपके साथ दर्शन अपडेट करना चाहेंगे आज दोपहर 12 बजे तक का। तो कुल मिला के 1089 तीर्थयात्रियों ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त किए हैं, जिसमें पुरुषों की संख्या 698, महिला 276, बालक 34, साधु 6, साध्वी 2, सुरक्षाकर्मी 73। तो कुल मिला के 1089 तीर्थयात्रियों ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त किए हैं।

0: विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं आए आपको आकाशवाणी दिल्ली लिए चलेंगे, जहां से आप समाचार समाप्त करेंगे। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की नई दिल्ली में शुरुआत की। वर्चुअल माध्यम से उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
2: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में आप राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान

0: मजबूत कदम हो गया।
1: कार्यक्रम में 28,000 जगहों से 1 करोड़ से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया। इनमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, माय भारत और राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक और स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, युवा क्लबों, गैर सरकारी संगठनों तथा आध्यात्मिक संगठनों के प्रतिभागी भी शामिल रहे। केरलम में मूसलाधार बारिश से हुई तबाही के बीच मौसम विभाग ने राज्य के 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। प्रदेश में बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि अन्य 8 लापता हैं। प्रभावित इलाकों में खोले गए 209 राहत शिविरों में 5,792 से अधिक लोगों को सुरक्षित पहुंचाया गया है। बारिश से जुड़ी घटनाओं में 27 मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं और 196 मकानों को आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा है। विभिन्न जिलों में फसलों के नुकसान की भी खबर है। पर्वतीय और नदियों के तटवर्ती इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। खराब मौसम के चलते मछुआरों को आज केरलम, कर्नाटक और लक्षद्वीप के समुद्री क्षेत्रों में न जाने की सलाह भी दी गई है। इस बीच जल भराव वाले इलाकों में सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। भारत आने वाले चीनी नागरिकों के लिए अगले सप्ताह से वीजा प्रक्रिया को और सरल बनाया जाएगा। चीन में भारत के राजदूत विक्रम दुरैस्वामी ने चीन की राजधानी पेइचिंग में पहली ओपन हाउस वार्ता में ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारतीय दूतावास सांस्कृतिक आयोजन बढ़ाएगा, कामकाजी भारतीयों के लिए कानूनी सहायता उपलब्ध कराएंगे और कौंसुलर सेवाओं में सुधार के लिए ओपन हाउस वार्ता नियमित रूप से आयोजित करने की भी योजना है। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कहा है कि अगर पाकिस्तान आपसी मुद्दों पर भारत का सहयोग चाहता है तो पहले उसे अपने आतंकी ढांचे को खत्म करना होगा। पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि को स्थगित रखने के भारत के फैसले के विरोध में इस्लामाबाद में हाल में एक सम्मेलन का आयोजन किया था। एक लेख में श्री क्वात्रा ने सिंधु जल संधि को लेकर भारत के खिलाफ युद्ध की धमकी देने वाले पाकिस्तान के एक पूर्व विदेश मंत्री की आलोचना की। श्री क्वात्रा ने कहा कि भारत को दोषी ठहराने और धमकियां देने के बजाय पाकिस्तान को अपनी जल उत्पादकता बढ़ानी चाहिए। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर प्रस्तावित सैन्य हमला फिलहाल टालने का फैसला किया है। राष्ट्रपति ट्रंप के अनुसार ईरान और पश्चिम एशिया के कुछ देशों के अनुरोध पर बातचीत को मौका देने के लिए फैसला लिया गया है। सोशल मीडिया पर जारी पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि अमरीका सैन्य कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन संभावित समझौते का रास्ता खुलने के कारण हमले को फिलहाल स्थगित किया गया है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi today said that as India moves towards becoming a Viksit Bharat, the nation's youth must be physically fit, mentally strong and full of self-confidence. Speaking on the launch of Nasha Mukti Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan virtually in New Delhi today, Mr. Modi said young people should always stay away from drugs and embrace a healthy lifestyle.
3: Aaj hum sabhi jis abhiyan ke sakshi ban rahe hain, wo abhiyan व्यक्ति के लिए है, परिवार के लिए है, समाज के लिए भी है और सबसे बड़ी बात है ये राष्ट्र के लिए है। आज जब देश ने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर हो।
2: The Prime Minister added that the launch will mark the beginning of a 100-week nationwide Jan Bhagidari campaign against substance abuse. He said that weekly activities will be organized every Sunday across the country to promote awareness and encourage public participation in building a drug-free society. More than 1 crore youth from 28,000 locations across the country participated in the event. The participants included governors of states, chief ministers of states, Mai Bharat and National Service Scheme volunteers, as well as participants from

विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आए आपको आकाशवाणी दिल्ली लिए चलेंगे, जहां से आप उर्दू, अंग्रेजी और हिंदी में समाचार समाप्त करेंगे।

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क के नौजवानों पर जोर दिया है कि वो विकसित भारत के मकसद के हुसूल की समत आगे बढ़ते हुए तंदुरुस्त, ज़हनी एतबार से मजबूत और खुद एतमादी से भरपूर रहें। वज़ीर आज़म ने नई दिल्ली में वर्चुअल वसीले से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का आगाज़ करते हुए कहा कि नौजवानों को मनशियात से दूर रहना चाहिए और सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी इख्तियार करनी चाहिए। केरलम में मूसलाधार बारिश से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। 8 अफराद की मौत होने की इत्तला मिली है। हज़ारों लोगों को इमदादी कैंपों में मुंतकिल किया गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुमकिना समझौते के फ्रेमवर्क पर इत्तफाक राय का दावा करते हुए ईरान पर फौजी हमले फिलहाल रोक दिए हैं। बैडमिंटन में तन्वी शर्मा ने ताइपे ओपन में पहली बार BWF वर्ल्ड टूर टाइटल जीता है। और ग्लासगो में दौलत मुश्तरका खेलों का आज आखिरी दिन है और भारत ने सोने के 13 तमगों समेत 39 तमगों के साथ चौथे मुकाम पर है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क विकसित भारत बनने की समत आगे बढ़ रहा है और मुल्क के नौजवानों को तंदुरुस्त, ज़हनी एतबार से मजबूत और ख़ुद एतमादी से सरशार होना चाहिए। आज नई दिल्ली में वर्चुअल वसीले से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान के आगाज़ के मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब मोदी

0: ने कहा कि नौजवानों को मुनशियात से हमेशा दूर रहना चाहिए और एक सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी इख्तियार करनी चाहिए। वज़ीर आज़म ने कहा कि इसके आगाज़ के साथ साथ मुनशियात की लानत के खिलाफ पूरे मुल्क में जन भागीदारी मुहिम भी शुरू हो रही है जो 100 हफ्ते तक जारी रहेगी। जनाब मोदी ने कहा कि मुआशरे से मुनशियात के खात्मे के लिए बेदारी को फ़रोग़ देने और अवामी शमूलियत की हौसला अफजाई के लिए पूरे मुल्क में हर इतवार को हफ्तावार सरगर्मियों का एहतमाम किया जाएगा।
1: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा। आने वाले 100 रविवार नशा मुक्त भारत की दिशा में 100 मजबूत कदम होंगे, 100 मजबूत स्टेप।
0: जनाब मोदी ने कहा कि मुनशियात की लत से लोग अपने मकासिद और अपने ख्वाब पूरे करने के रास्ते से दूर हो जाते हैं। इस लानत से न सिर्फ कुंबे बर्बाद होते हैं बल्कि मुल्क की ताकत भी कमज़ोर होती है। वज़ीर-ए-आज़म ने नौजवानों को मुनशियात की लानत से महफूज रखने की ज़रूरत पर जोर दिया और कहा कि नौजवानों को इस लानत के संगीन मुज़मरात को समझना चाहिए क्योंकि इससे आखिरकार करियर तबाह हो जाते हैं और मुस्तकबिल भी बर्बाद होता है।
1: हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, घर का कोई बच्चा अगर नशे का शिकार बन गया है तो इसे सामाजिक प्रतिष्ठा की आड़ में छिपाए नहीं, जिसकी जरूरत हो उसका सहयोग मांगे, मन खोल करके उससे बात करें, जो एक्सपर्ट हैं उनका सहयोग लें, मेडिकल हेल्प से अपने बच्चे को नशे से मुक्त कराने का प्रयास करें। हमें परिवार में बच्चों से खुलकर संवाद की संस्कृति भी बनानी चाहिए।
0: वज़ीर आज़म ने कुंभों पर जोर दिया कि वो मुआशरे में बदनामी के डर से मुनशियात के इस्तेमाल के केसों को पोशीदा न रखें। जनाब मोदी ने कहा कि इस तरह के कुंभों को बरवक्त मदद के लिए आगे बढ़कर खुलकर बात करनी चाहिए और माहिरीन से सलाह लेनी चाहिए। वज़ीर आज़म ने कहा कि कुंभों को इब्तदाई मरहले में ही तंबीह की अलामतों का पता लगाने की खातिर खुली बातचीत का माहौल कायम करना चाहिए और बच्चों को बरवक्त मदद फराहम करनी चाहिए। जनाब मोदी ने स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में असातिज़ा और प्रोफेसर साहिबान से भी अपील की कि वो तलबा के साथ गुफ्तगू में मुनशियात की लानत के खतरात के बारे में बाकायदगी से बात करते रहें और कैंपस में बेदारी की मुहिम का एहतमाम करें। इस प्रोग्राम में मुल्क भर में 28,000 मुकामात से 1 करोड़ से ज़्यादा नौजवान हिस्सा ले रहे हैं। इस प्रोग्राम के शुरका में स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों, यूथ क्लब, गैर सरकारी तंजीमों और रूहानी तंजीमों के शुरका के साथ साथ माय भारत और नेशनल सर्विस स्कीम के रजाकार भी शामिल हैं। अमेरिका में भारत के सफ़ीर विनय मोहन क्वात्रा ने जोर देकर कहा है कि अगर पाकिस्तान दो तरफ़ा मामलात पर भारत के साथ इश्तराक चाहता है तो उसे दहशतगर्दी के उस बुनियादी ढांचे को पहले ख़त्म करना होगा जो उसने बना रखा है। पाकिस्तान ने दरियाए सिंध से मुतालिका भी मुआहदे को मुअत्तल रखने के भारत के फैसले पर एहतजाज के लिए हाल ही में इस्लामाबाद में एक कॉन्फ्रेंस तलब की थी। जनाब विनय मोहन क्वात्रा ने एक न्यूज़ मैगज़ीन में शाया होने वाले मजमून में पाकिस्तान के एक साबिक वज़ीर ख़ारजा के उस बयान पर नुक्ताचीनी की है जिसमें उन्होंने दरियाए सिंध से मुतालिका भी मुआहदे के बारे में पाकिस्तान के मुतालबात पूरे न होने की सूरत में भारत के खिलाफ जंग की धमकी दी थी। भारतीय सफीर ने कहा कि अपने अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए भारत के खिलाफ जंग लड़ने की धमकी देना पाकिस्तान की एक पॉलिसी बन गई है। जनाब क्वात्रा ने यह भी कहा कि कॉन्फ्रेंसें तलब करके भारत को मौरिद इल्ज़ाम ठहराने और धमकियां देने के बजाय पाकिस्तान को पानी की अपनी कमज़ोर सलाहियत को दुरुस्त करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अपनी हर अंदरूनी नाकामी के लिए भारत पर इल्ज़ाम लगाना पाकिस्तान की पुरानी रविश है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। केरलम में मूसलाधार बारिश से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। बारिश से वाबस्ता वाकयात में 8 अफराद की मौत होने की इत्तला मिली है जबकि 8 दीगर अफराद लापता बताए गए हैं। कल के मुकाबले आज बारिश का जोर कम होने से लोगों को कुछ राहत मिली है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: मुतासरा इलाकों में 5,700 से ज़्यादा अफराद को 209 इमदादी कैंपों में मुंतकिल किया गया है। रियासती सरकार के मुताबिक 27 मकान पूरी तरह तहस नहस हो गए हैं, जबकि 100

0: 96 मकानों को जुजवी तौर पर नुकसान पहुंचा है। मुख्तलिफ जिलों से फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचने की इत्तला मिली है। पहाड़ी इलाकों और दरिया के किनारे के नज़दीक रहने वालों को सलाह दी गई है कि वो चौकस रहें। इधर भारतीय मौसमियात महकमे ने रियासत के 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केरलम, कर्नाटक और लक्षद्वीप के साहली इलाकों में माहीगीरों को सलाह दी गई है कि वो आज समुद्र में ना जाएं। तिरुवनंतपुरम से अनिला बालाकृष्णन की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं अब्दुल मालिक।
1: अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका ने ईरान पर फौजी हमला फिलहाल न करने से इत्तफाक कर लिया है। इससे कबल ईरान और मगरबी एशिया के कई मुल्कों ने हमले रोकने की अपील की थी। सदर ट्रंप ने यह दावा किया है कि एक मुमकिन समझौते के फ्रेमवर्क पर इत्तफाक राय हो गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर सदर ट्रंप ने कहा कि अमरीका फौजी कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन सिफारतकारी के लिए मौका फराहम करने की खातिर हमलों को मुअत्तल करने का फैसला किया है। बैडमिंटन में भारत की तन्वी शर्मा ने ख्वातीन के ताइपे ओपन सुपर सिंगल्स का टाइटल जीत लिया है। उन्होंने फाइनल में वियतनाम की छठे नंबर की खिलाड़ी गुइन थुई लिन्ह को 21-16, 21-16 से हरा दिया। इस तरह 17 साल की तन्वी शर्मा ने पहली बार BWF वर्ल्ड टूर टाइटल जीता है और वो ताइपे ओपन जीतने वाली सबसे कम उम्र खिलाड़ी बन गई हैं। ग्लासगो में दौलत मुश्तरका खेलों का आज आखिरी दिन है और भारत सोने के 13 तमगों समेत 39 तमगों के साथ चौथे मुकाम पर है। भारत ने अब तक चांदी के 17 और कांसे के 9 तमगे भी जीते हैं। इससे कबल भारत ने मुक्केबाजी में सोने के 7 तमगे जीते, जो कि एक रिकॉर्ड है। भारतीय मुक्केबाजों ने दौलत मुश्तरका खेलों में अब तक की बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। सोने के 7 तमगों के साथ साथ मुक्केबाजी में चांदी के 3 तमगे भी मिले। इधर जूडो में भी भारतीय खिलाड़ियों ने 4 तमगे जीतकर तारीख रकम की है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया CP राधा कृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तमगे जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी है। अहमदाबाद को ग्लासगो में जारी 2026 के दौलत मुश्तरका खेलों की अख्तितामी तकरीब के दौरान दौलत मुश्तरका खेलों का परचम और मेज़बान शहर के बैटन बाज़ाब्ता तौर पर सौंपी जाएगी। खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क के नौजवानों पर जोर दिया है कि वो विकसित भारत के मकसद के हुसूल की क्षमता आगे बढ़ते हुए तंदुरुस्त ज़हनी एतबार से मजबूत और खुद एतमादी से भरपूर रहें। वज़ीर-ए-आज़म ने नई दिल्ली में वर्चुअल वसीले से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का आगाज करते हुए कहा कि नौजवानों को मुनशियात से दूर रहना चाहिए और सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी इख्तियार करनी चाहिए। केरलम में मूसलाधार बारिश से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। 8 अफराद की मौत होने की इत्तला मिली है। हजारों लोगों को इमदादी कैंपों में मुंतकिल किया गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुमकिन समझौते के फ्रेमवर्क पर इत्तफाक राय का दावा किया है। और बैडमिंटन में तन्वी शर्मा ने ताइपे ओपन में पहली बार BWF वर्ल्ड टूर टाइटल जीता है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी। I'm Anuja Kumar with the Midday News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi urges youth of the country to be physically fit and mentally strong in the run-up to the goal of Viksit Bharat. Launching Nasha Mukti Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan, Mr. Modi said young people should stay away from drugs and embrace a healthy lifestyle. Heavy rains continue to wreak havoc in Keralam. 8 people reported killed, thousands shifted to relief camps. US President Donald Trump puts on hold planned military attack on Iran, claiming framework of a potential agreement had been reached. In badminton, Tanvi Sharma claims her maiden BWF World Tour title at Taipei Open. And in Commonwealth Games, India enters the final day with 4th place in medal tally, including 13 gold. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today said that as India moves towards becoming a Viksit Bharat, the nation's youth must be physically fit, mentally strong and full of self-confidence. Speaking on the launch of Nasha Mukti Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan virtually in New Delhi today, Mr. Modi said young people should always stay away from drugs and embrace a healthy lifestyle.
3: Aaj hum sabhi jis abhiyan ke sakshi ban rahe hain, wo abhiyan व्यक्ति के लिए है, परिवार के लिए है, समाज के लिए भी है।

और सबसे बड़ी बात है ये राष्ट्र के लिए है। आज जब देश ने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा

0: Closing day. A report. India enters the final day in fourth place in the medal table with 39 medals, including 13 gold, 17 silver, and 9 bronze. After its most productive day of the Commonwealth Games, led by record 7 gold medals in boxing, the boxers produced India's best ever Commonwealth Games campaign in the sport, topping the medal table with 7 gold and 3 silver medals. Jasmine Lamboria, Preeti Pawar, Priya Ghangas, Sakshi Chaudhary, and Arundhati Chaudhary won women's titles, while Sachin Sivach and Ankush Pangha secured gold in the men's event. Olympic medalist Lovlina Borgohain settled for silver in the women's 75 kg category, while Jadumani Singh and Narinder Barwal also finished runners-up in their respective men's weight classes. India's judokas also scripted history, winning 4 medals in the country's best-ever Commonwealth Games performance in the sport. Harsh Singh and Asmita Day became India's first judo gold medalist at the Games, while Yamini Maurya won silver and Unnati Sharma claimed bronze. Para-athletes added another landmark chapter, securing 7 medals, 3 gold, 2 silver and 2 bronze. Their best ever Commonwealth Games haul. Soman Rana won the men's 5F7 para shot put gold with a season best throw of 13.40 meters, while Shubham Joyal took silver. On the track, Gulveer Singh became the first Indian to win a Commonwealth Games 5000 meter medal by claiming bronze, supplementing his earlier silver in the 10,000 meters. Komudi Parikh for Akashvani News.
1: And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi urges youth of the country to be physically fit and mentally strong in the run-up to the goal of Viksit Bharat. Launching Nasha Mukti Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan, Mr. Modi said young people should stay away from drugs and embrace a healthy lifestyle. Heavy rains continued to wreak havoc in Keralam. 8 people reported killed, thousands shifted to relief camps. U.S. President Donald Trump puts on hold planned military attack on Iran, claiming framework of a potential agreement had been reached. In badminton, Tanvi Sharma claims her maiden BWF World Tour title at Taipei Open. And in Commonwealth Games, India enters the final day with 4th place in medal tally. And with that, we end the midday news.
2: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए युवाओं से शारीरिक रूप से चुस्त, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर रहने का आह्वान किया। नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रहकर स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए। केरलम में तेज बारिश से जानमाल का नुकसान, 8 लोगों की मौत, हजारों लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर सैन्य हमला स्थगित किया, कहा संभावित समझौते का ढांचा तैयार। बैडमिंटन में भारत की तन्वी शर्मा ने ताइवे ओपन में अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीता और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों का आज आखिरी दिन। भारत 13 स्वर्ण सहित 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की नई दिल्ली में शुरुआत की। वर्चुअल माध्यम से उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
3: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहें और उससे दूर रहें। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे।
3: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार

0: कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा। आने वाले 100 रविवार नशा मुक्त भारत की दिशा में 100 मजबूत कदम हो गया।
1: श्री मोदी ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत लोगों को लक्ष्य से भटकाती है और इससे देश की ताकत भी कमजोर होती है।
0: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है और जब परिवार में समाज में ऐसा होता है राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है और इसलिए दुश्मन देश भी षड्यंत्र करके हमारे देश के युवाओं को इस नशे की लत में खींचने के लिए कोई कोशिश बाकी नहीं रखते हैं और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
1: प्रधानमंत्री ने आग्रह किया कि सामाजिक बदनामी की डर से मादक पदार्थों के सेवन को छिपाए नहीं।
0: हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, घर का कोई बच्चा अगर नशे का शिकार बन गया है तो इसे सामाजिक प्रतिष्ठा की आड़ में छिपाए नहीं, जो एक्सपर्ट हैं उनका सहयोग लें, मेडिकल हेल्प से अपने बच्चे को नशे से मुक्त कराने का प्रयास करें। हमें परिवार में बच्चों से खुलकर संवाद की संस्कृति भी बनानी चाहिए ताकि ऐसे भंवर में फंसने से पहले ही आप उसका हाथ थाम सके।
1: श्री मोदी ने कहा कि परिवारों को शुरुआती चरण में ही चेतावनी के संकेतों की पहचान करके खुलकर बातचीत का माहौल बनाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि अलग अलग रहने, असामान्य व्यवहार, बातचीत से बचने, देर रात तक बाहर रहने या बार बार पैसे मांगने जैसी आदतें मादक पदार्थों के सेवन के शुरुआती संकेत हो सकते हैं। उन्होंने स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों से भी अपील की कि वे मादक पदार्थों के सेवन के खतरों पर नियमित रूप से विद्यार्थियों के साथ चर्चा करें। कार्यक्रम में 28,000 जगहों से 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं ने हिस्सा लिया। इनमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, माय भारत और राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक और स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, युवा क्लबों, गैर सरकारी संगठनों तथा आध्यात्मिक संगठनों के प्रतिभागी भी शामिल हैं। पंजाब के 7 शिक्षा संस्थानों के हजारों छात्रों ने आज नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान में भाग लिया। उन्होंने नशा मुक्त भारत निर्माण के संकल्प को समाज की सामूहिक जिम्मेदारी बताया। मोहाली स्थित चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में छात्रों को नशा न करने और दूसरों को भी नशे की लत से बाहर निकलने में सहयोग देने की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने चंडीगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में भागीदारी की। ये समाचार हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केरलम में मूसलाधार बारिश से हुई तबाही के बीच मौसम विभाग ने राज्य के 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। प्रदेश में बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 8 अन्य लापता हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रभावित इलाकों में खोले गए 209 राहत शिविरों में 5,792 से अधिक लोगों को सुरक्षित पहुंचाया गया है। बारिश से जुड़ी घटनाओं में 27 मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं और 196 मकानों को आंशिक नुकसान पहुंचा है। विभिन्न जिलों से फसलों के नुकसान की भी खबर है। पर्वतीय और नदी के तटवर्ती इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। खराब मौसम के कारण मछुआरों को आज केरलम, कर्नाटक और लक्षद्वीप द्वीप के समुद्री क्षेत्रों में नहीं जाने की सलाह दी गई है। इस बीच जल भराव वाले इलाकों में सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। तिरुवनंतपुरम से अनिला बालकृष्णन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: उधर गुजरात में भी कच्छ, वाव, थराद, बनासकांठा, पाटन, मेहसाणा, मोरबी, सुरेंद्रनगर और साबरकांठा में भी तेज बारिश की संभावना है।
3: मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक आज गुजरात में बारिश की तेजी कम हुई है। इसके साथ ही राज्य में अभी 33 डैम हाई अलर्ट पर रखे गए हैं, जबकि गुजरात की लाइफलाइन सरदार सरोवर नर्मदा डैम में 76% से ज्यादा पानी जमा हो गया है। दूसरी ओर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए गुजरात में 17 NDRF और 33 SDRF टीम को तैनात किया गया है। अब तक राज्य में 70,040 लोगों का स्थानांतरण

0: टीकाकरण किया गया है और 9680 लोगों को बचाया गया है। रवेश अड़ियचा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: ओडिशा में बाढ़ की स्थिति सामान्य हो रही है। महानदी का जलस्तर घटने से महानदी बेसिन में फिलहाल किसी खतरे की आशंका नहीं है। हमारे संवाददाता ने बताया कि बड़ी संख्या में लोगों की आजीविका प्रभावित हुई है।
2: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है क्योंकि महानदी और दूसरी प्रमुख नदियों का जलस्तर घट रहा है। हालांकि उत्तरी उड़ीसा बुरी तरह प्रभावित हुआ है। राहत और बहाली के काम में तेजी लाने के लिए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने बाढ़ प्रभावित जिलों में काम की निगरानी के लिए 4 वरिष्ठ मंत्रियों को तैनात किया है। उड़ीसा सरकार ने पुनर्वास के उपाय तेज कर दिए हैं जबकि केंद्र सरकार ने राहत और फसल के नुकसान के आकलन के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: मौसम विभाग ने आज कर्नाटक, केरलम, माहे, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण, गोवा और पूर्वोत्तर में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। अगले 2 दिनों में जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, विदर्भ तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने की आशंका है। दिल्ली में भी आज रात कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर प्रस्तावित सैन्य हमला फिलहाल टालने का फैसला किया है। राष्ट्रपति ट्रंप के अनुसार ईरान और पश्चिम एशिया के कुछ देशों के अनुरोध पर बातचीत को मौका देने के लिए यह फैसला लिया गया है। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि अमरीका सैन्य कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार है लेकिन संभावित समझौते का रास्ता खुलने के कारण हमले को फिलहाल स्थगित किया गया है। उन्होंने दावा किया कि प्रस्तावित समझौते में होर्मुज जलडमरू मध्य को तत्काल पूरी तरह खोलना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर रोक की बात शामिल है। ईरान ने अब तक ट्रंप के इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। भारत आने वाले चीनी नागरिकों के लिए अगले सप्ताह से वीजा प्रक्रिया को सरल बनाएगा। चीन में भारत के राजदूत विक्रम दोरेस्वामी ने चीन की राजधानी पेइचिंग में पहली ओपन हाउस वार्ता में यह बात कही। उन्होंने कहा कि भारतीय दूतावास सांस्कृतिक आयोजन बढ़ाएगा, कामकाजी भारतीयों के लिए कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगा और कौंसलर सेवाओं में सुधार के लिए ओपन हाउस वार्ता नियमित रूप से आयोजित करने की भी योजना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। बैडमिंटन में तन्वी शर्मा ने ताइपे ओपन सुपर महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। ये तन्वी शर्मा का पहला BWF वर्ल्ड टूर है। फाइनल में तन्वी ने वियतनाम की छठी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी गुएन थुई लिन को हराया। 17 साल की तन्वी ताइवान की ताइजू यिंग को पीछे छोड़कर सबसे कम उम्र की ताइपे ओपन चैंपियन बनी है। वे 2008 में साइना नेहवाल के बाद ये खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी हैं। स्कॉटलैंड में ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के अंतिम दिन आज जूडो में 3 भारतीय खिलाड़ी चुनौती पेश करेंगे। पुरुषों के 100 किलोग्राम वर्ग में अवतार सिंह, 100 से अधिक किलोग्राम वर्ग में यश घंगास और महिलाओं के 78 किलोग्राम वर्ग में इशरूप नारंग खेलेंगे। ट्रैक साइकिलिंग में पुरुषों की 1000 मीटर टाइम ट्रायल स्पर्धा में रोनाल्डो लेंतोजाम हिस्सा लेंगे और आज ही पैरा ट्रैक साइकिलिंग स्पर्धाएं भी हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुक्केबाजी में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए भारत 7 स्वर्ण और 3 रजत के साथ शीर्ष पर रहा है। विशाल शर्मा की रिपोर्ट।
3: मुक्केबाजी के महिला वर्ग में जैस्मीन लेम्बूरिया, प्रीति पवार, प्रिया घंगास, साक्षी चौधरी और अरुंधति चौधरी ने स्वर्ण पदक हासिल किए। पुरुष वर्ग में सचिन सिवाच और अंकुश पंघाल ने स्वर्ण जीता। लवलीना बोरगोहेन ने महिला वर्ग के 75 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। पुरुष वर्ग में जदुमणि सिंह और नरेंद्र बेरवाल उपविजेता रहे। भारत के जूडो खिलाड़ियों ने भी 4 पदक जीतकर इतिहास रच दिया। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का ये अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। हर्ष सिंह और अस्मिता डे भारत के पहले जूडो स्वर्ण पदक विजेता बने। यामिनी मौर्य ने रजत और उन्नति शर्मा ने कांस्य जीता। पैरा एथलीटों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीतकर राष्ट्रमंडल खेलों में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। सोमन राणा ने पुरुषों के F50

0: सेवन पैराशूट पुट में स्वर्ण जबकि शुभम जोयल ने रजत पदक जीता। 5000 मीटर दौड़ में गुलवीर सिंह ने कांस्य जीतकर इतिहास रच दिया। राष्ट्रमंडल खेलों में ये उपलब्धि हासिल करने वाले वे पहले भारतीय हैं। गुलवीर सिंह ने 10000 मीटर में भी रजत पदक जीता। एक ही राष्ट्रमंडल खेल में दो पदक जीतने वाले वे पहले भारतीय बन गए हैं। पदक तालिका में भारत 13 स्वर्ण 17 रजत और 9 कांस्य के साथ फिलहाल कुल 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर है।
1: खेलों के समापन समारोह के दौरान आज देर रात अहमदाबाद को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रमंडल खेल ध्वज और होस्ट बैटन सौंपा जाएगा। इस अवसर पर अहमदाबाद 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की जिम्मेदारी संभालेगा। अहमदाबाद में होने वाले 2030 राष्ट्रमंडल खेल इस बहु खेल प्रतियोगिता के शताब्दी वर्ष का प्रतीक होंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया आज नई दिल्ली में संडे ऑन साइकिल के 84वें संस्करण में शामिल हुए। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में छात्रों, फिटनेस प्रेमियों, साइकिल चालकों, परिवारों और एनसीसी के युवा कैडेट्स ने नशा मुक्त भारत अभियान के समर्थन में हिस्सा लिया। उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन ने आज पिंगली वेंकैया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पर संदेश में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि पिंगली वेंकैया महान स्वतंत्रता सेनानी, सच्चे गांधीवादी और भारत के राष्ट्रध्वज के शिल्पकार थे। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए युवाओं से शारीरिक रूप से चुस्त, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर रहने का आह्वान किया। नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रहकर स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए। केरलम में तेज बारिश से जान माल का नुकसान, 8 लोगों की मौत, हजारों लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों का आज आखिरी दिन, भारत 13 स्वर्ण सहित 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, न्यूज़ ऑन एयर की आराधना चैनल डीटीएच और ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी हम उपलब्ध हैं। श्रोताओं, आपके साथ आज दोपहर 1 बजे का दर्शन अपडेट हम आपके साथ साझा करना चाहेंगे। तो कुल मिला के 1397 तीर्थ यात्रियों ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त किए हैं, जिसमें पुरुषों की संख्या 983, महिला 279, बालक 38, साधु 8, साध्वी 4, सुरक्षाकर्मी 85। तो कुल मिला के 1397 तीर्थयात्रियों ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त किए हैं।

0: FM पहलगाम 100.1 MHz पर। श्रोताओं, जुड़े हुए आप हमारे साथ और हम आपके साथ पल पल के अपडेट साझा करते हैं। अभी फ़ोन लाइन पर जुड़े हुए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनंतनाग से एस तारिक साहब। जी तारिक साहब,
1: हाँ जी प्रधान, बहुत शुक्रिया। तो 57 दिनों तक चलने वाली श्री अमरनाथ जी यात्रा के आज 30 दिन पूरे हो चुके हैं और आजकल घाटी में बारिशों का मौसम भी चल रहा है। और मौसम की बात चली तो पहलगाम श्री अमरनाथ जी यात्रा के पवित्र गुफा तक मौसम आमतौर पर खुशगवार मगर अब्र आलूद है, जबकि दोपहर के बाद वर्षा और बारिशों के झरनों की संभावना व्यक्त की गई है। इधर पहलगाम और यात्रा ट्रैक में दिन का दर्जे हरारत 21 से 23 डिग्री सेल्सियस जबकि शाम के वक्त 14 से 15 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहने की तवक्का है। शाम 5 बजे के बाद हल्की वर्षा का सिलसिला धीरे धीरे कम होने की संभावना है। तमाम रात के समय मौसम आमतौर पर अब्र आलूद रहेगा और दर्जे हरारत घटकर 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। दक्षिण पश्चिम दिशा से लगभग 3 मील प्रति घंटा के रफ्तार से हल्की पवन चलने का अनुमान है जबकि हवा में नमी की मात्रा लगभग 85% बरकरार है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं और संबंधित अमले से अपील की है कि वर्षा और फिसलन के कारण यात्रा मार्ग पर पूरी सावधानी बरतें और सभी मौसमी व प्रशासनिक निर्देशों का पालन करें। ये खासकर पहलगाम क्षेत्र के लिए जरूरी है। ये भी आपके साथ साझा करता चलूं कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए प्रशासन ने यात्रा के दोनों मार्ग पहलगाम और बालतल तथा जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी मौसम के निरंतर निगरानी के लिए 2 वेदर रडार स्थापित कर दिए हैं। ये आधुनिक प्रणाली बादल फटने, मूसलधार वर्षा, गरज चमक, ओले वृष्टि और तेज पवन जैसे स्थानीय मौसमी संकटों की बरवक्त पहचान कर तुरंत चेतावनी जारी करते हैं जिसके आधार पर यात्रियों की सुरक्षा और यात्रा के संचालन से जुड़े आवश्यक निर्णय लिए जाते हैं। ये एक जरूरी चीज है जो प्रशासन ने पहले ही तय किया है। तो इस वजह से जो प्रशासन ने पहले ही मौसम के आने जो भी इतला आती है तो इसी के हिसाब से यात्रा आने जाने की जो फैसले या निर्णय लिए जाते हैं। इसके बीच आज जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से 177 छोटी बड़ी वाहनों में 3,886 यात्रियों पर मुश्तमिल एक और जत्था बालतल के मुंतखब ट्रांजिट कैंप पहुंच चुका है जिनमें 3,098 पुरुष, 673 महिलाएं, 5 बालक, 87 साधु, 22 साध्वी और 1 बालक साधु भी शामिल है। 57 दिनों की यात्रा के आरंभ से अब तक बाबा बर्फानी के पवित्र दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की कुल संख्या जो कल शाम तक थी 4,55,281 तक पहुंच गई थी जबकि कल एक ही दिन में 8,493 श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के पवित्र दर्शन किए। रिपोर्ट फाइल करने तक अभी दर्शन करने वाले यात्रियों की तादाद 2,000 से जायद हो गई है और दर्शन का सिलसिला शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। इधर पहलगाम के नुनन आदर्श शिविर शिशनाग और पंचतरनी में इस समय कोई भी श्रद्धालु मौजूद नहीं है। ताम यात्रा मार्ग और सभी आधार शिविरों पर विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी श्रद्धालुओं की सेवा सुरक्षा और आवश्यक सहूलियत की फराहमी के लिए पूरी तरह बिल्कुल तैनात है। तो मैं आपको एक और जज्बे की बात बताऊं तो दरअसल ये उत्तर प्रदेश के श्री सुनील सनातनी गुजशत 415 दिनों से श्री अमरनाथ जी यात्रा के एक अनोखी यात्रा पर हैं। वो थोड़ी तृणमूल के एक पट्टी पर जो थर्माकोल होता है उसकी पट्टी पर दंडवत पर नाम करते हुए श्री अमरनाथ जी के पवित्र गुफा के और आस्था और श्रद्धा के साथ अपनी यात्रा जारी रखे हुए हैं जिनको कल हमने साउथ कश्मीर अनंतनाग में भी देखा है। श्री सुनील सनातनी आजकल बिल्कुल अभी जो उसका सफर है जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिन पर पहुंचे इनके ये यात्रा कड़े सुरक्षा बंदोबस्त के बीच जारी है। दुश्वार मौसमी परिस्थितियों और लगातार वर्षा के बावजूद इनकी श्रद्धा में कोई कमी नहीं आई और वो बाबा बर्फानी के दर्शन के संकल्प के साथ लगातार आगे बढ़ रहे हैं। श्री सुनील सनातनी ने कहा है कि इनकी ये अनोखी यात्रा मानव कल्याण, शांति और समन्धि के कामना के साथ भगवान शिव के प्रति इनके आगत आस्था और भक्ति की प्रतिक्रिया है। इनकी ये यात्रा जो है यात्रियों और सनातनी लोगों के लिए बीच में आकर्षण कर रहा है। इनके लोग बड़े धूमधाम से इनको देख रहे हैं और दुआएं देते हैं और उनसे दुआएं लेते हैं। चलो हम आशा करते हैं।

0: बाबा बर्फानी की पवित्र दर्शन के लिए आने वाले सभी, उनके साथ जो श्री सुनील सनाती दर और बाकी जो जितने भी श्रद्धालु थे, उनकी मनोकामना पूरी हो और उनकी यात्रा सुखद, सुरक्षित और मंगलमय साबित हो। जी
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
0: थैंक यू।

0: श्रोताओं जुड़े हुए आप विशेष प्रसारण श्रेया मनान जी यात्रा 2026 के संग जो आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालतल और एफएम पहलगाम पर। अभी फ़ोन लाइन पर जुड़े हुए हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद तस्कीन साहब रामबन से। आइए जानते हैं क्या कुछ अपडेट लेके आए हैं हमारे साथ साझा करने के लिए यात्रा के हवाले। जी तस्कीन साहब
1: जी शुक्रिया। श्री अमरनाथ यात्रा के हवाले से ये अपडेट है कि जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे से गुजर होता है आने वाली यात्रा का भी और जाने वाली यात्रा का भी, आज सुबह जो बालतल जम्मू से बालतल के लिए जो यात्रा 3886 यात्रियों पर मुश्तमिल थी 177 व्हीकल्स में, वो करीबन 12 बजे के आसपास यहां से क्रॉस होकर कश्मीर की तरफ रवाना किए गए थे 11 और 12 के आसपास। तो इसी तरह जो वापस जो बालतल से आज श्री अमरनाथ यात्री जम्मू की तरफ आ रहे थे 123 गाड़ियों में 4400 से जायद यात्री थे और वो भी इस वक्त उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से गुजर रहे हैं और जम्मू की तरफ बढ़ रहे हैं। मजमूई तौर पर जो मौसमी सूरत रही वो आज सुबह से ही, हालांकि हल्की हल्की बारिश सुबह तक हुई, लेकिन उसके बाद जो आकाश है मतला है, बिल्कुल आलूद है और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और जो हाईवे है इस वक्त यात्रा को निकालने के बाद जो रूटीन में होता है श्री अमरनाथ यात्रा को निकालने के बाद जो रूटीन का ट्रैफिक है 7 बजे से 12 बजे तक नगरोटा से कश्मीर की तरफ ट्रैफिक को चलने की इजाजत दी गई जो पैसेंजर ट्रैफिक होता है, उसके बाद जो 8 बजे से 1 बजे तक उधमपुर से कश्मीर की तरफ ट्रैफिक को चलने की इजाजत दी गई और इसे सख्ती से अमलाया जा रहा है और जो भी खासकर जो यात्रीज वगैरह होते हैं तो उनको कहा गया है कि वो आइडेंटिटी कार्ड वगैरह साथ रखे या जो रजिस्ट्रेशन उनकी है उसको साथ रखे, उसके बाद इन्हें आगे चलने की इजाजत और 3 बजे के बाद बानहाल टनल से न किसी यात्री को कश्मीर की तरफ जाने की इजाजत होती है और ना ही किसी टूरिस्ट गाड़ी को।

0: कश्मीर की तरफ जाने की इजाजत होती है। और ये जो रिस्ट्रिक्शंस है, जो बंदिश है, ये जो चंद्रकूट है यात्रा निवास, वहां पर 1-2 बजे से शुरू होती है दिन के, दोपहर बाद 2 बजे से 2 बजे के बाद, वहां से जो जम्मू से ट्रैफिक आता है, जो अनरजिस्टर्ड व्हीकल्स होती है यात्रा के हवाले से, और जो टूरिस्ट होते हैं, 2 बजे के बाद चंद्रकूट से कश्मीर की तरफ आने नहीं दिया जाता। उसके बाद 3 बजे इनको बानहाल में रोका जाता है, और 3 बजे के बाद कोई भी ट्रैफिक कश्मीर की तरफ जो यात्रा रिलेटेड हो, जो टूरिस्ट हो, ऐसी कैब्स, कार्स, व्हीकल्स, गाड़ियां जो भी होती है उन्हें रोका जाता है। और रात का कयाम उन्हें यहाँ जो लंगर साइट से बनाई हुई 3 दर्जन के करीब लंगर से हमारे रामबंद और यहाँ बानहाल में, तो उन पर उनको रुकाया जाता है। खाने पीने का इंतजाम है, रहने का इंतजाम है, और कल सुबह उन्हें अर्ली मॉर्निंग में सिक्योरिटी बंदोबस्त के बीच यहाँ से कश्मीर की तरफ रवाना किया जाएगा।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: जी, शुक्रिया।

0: विशेष प्रसारण श्रेया मनाजी यात्रा 2026। आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालतल और एफएम पहलगाम के संग। श्रोताओं, पल पल के अपडेट्स हम आपके साथ साझा करते हैं। फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता रहीम रिजवान साहब गांधरबल से। जी रहीम रिजवान साहब,
1: बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बालतल मुख्य मार्ग से सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा सुचारू रूप से जारी है। तो आज पहले अगर हम मौसम की स्थिति के बारे में बात करेंगे तो सुबह सवेरे आकाश पे बादल छाए हुए थे, हल्की हल्की वर्षा भी हो रही थी, ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही थी। लेकिन इन ठंडी हवाओं का आनंद लेते हुए जो श्रद्धालु है वो पवित्र गुफा की ओर रवाना हुए। तो इस दौरान प्रशासन ने यात्रियों के लिए हर पड़ाव पर उच्च स्तर की सुविधाएं उपलब्ध रखी हैं। आज सुबह सवेरे 1833 श्रद्धालु ने बालतल बेस कैंप से पवित्र गुफा की ओर अपना पवित्र सफर शुरू किया। दुमेल कंट्रोल गेट पार करने वाले इन श्रद्धालु में 1392 पुरुष, 236 महिलाएं, 71 बालक बालिका, 13 साधु, 8 साधिया एवं 113 सुरक्षा कर्मी भी शामिल थे। इस दौरान अगर हम बात करेंगे, आज वापस जो शिवलिंगम का दर्शन करके यात्री बालतल बेस कैंप वापस पहुंच रहे हैं, तो अभी तक सरकारी आंकड़ों के अनुसार 712 यात्री शिवलिंगम का दर्शन करके सुरक्षित बालतल बेस कैंप पहुंचे, जिनमें 455 पुरुष, 219 महिलाएं, 8 बालक बालिका एवं 30 सुरक्षा कर्मी शामिल हैं। ये श्रद्धालु आज रात भर बालतल बेस कैंप में ही विश्राम करेंगे और विश्राम करने के बाद इन यात्रियों को कल सुबह सवेरे मुख्तलिफ वाहनों में जम्मू भगवती नगर बेस कैंप की तरफ रवाना किया जाएगा। तो अगर हम ये यात्रियों का पवित्र गुफा से शिवलिंगम का दर्शन करके वापस बालतल आने का सिलसिला देर रात तक जारी रहेगा। तो अगर हम

0: कल की बात करेंगे तो कल रात बीते रात 11 बजे तक 8,134 श्रद्धालु ने पवित्र गुफा जाकर हाजिरी दी। माथा टेका, शिवलिंगम का दर्शन करके सुरक्षित वापस पहुंचे, जिनमें 5,398 पुरुष, 2,410 महिलाएं, 45 बालक बालिका, 39 साधु, 29 साधियां, 5 ट्रांसजेंडर एवं 208 सुरक्षा कर्मी इन यात्रियों में शामिल थे। इन यात्रियों को आज सुबह सवेरे रात्रि विश्राम के बाद मुख्तलिफ वाहनों में जम्मू की ओर रवाना कर दिया गया। इधर जो आज सुबह सवेरे यात्रियों का और एक जत्था जम्मू भगवती नगर बेस कैंप से घाटी आगमन हुआ, उन्होंने कंगन और सोनमार्ग क्रॉस किया है, वो बालतल की तरफ स्थान हो रहे हैं। चंदीला मुंह के बाद वो बालतल बेस कैंप पहुंचेंगे, जहां उन्हें आज रात भर रुकना पड़ेगा और उन्हें जांच पड़ताल की जाएगी। जो उन्होंने पंजीकरण की है उनके कागजात उनको जमा करने होंगे और उन्हें RFID कार्ड हासिल करने के बाद उनको भी कल सुबह सवेरे पवित्र गुफा की ओर जाने की अनुमति दी जाएगी। इस तरह हम कह सकते हैं कि 57 रोज जारी रहने वाली सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा बालतल मुख्य मार्ग से सुचारू रूप से जारी है। श्रद्धालुओं के लिए जिला प्रशासन गांधरबल ने हर पड़ाव पर उच्च स्तर की सुविधाएं उपलब्ध रखी हैं। अगर हम बालतल की बात करेंगे या बालतल से पवित्र गुफा तक जगह जगह यात्रियों के लिए तमाम तरह सहूलियात जो है वो मैसर रखी गई है। इसके साथ साथ सिक्योरिटी के भी कड़े प्रबंध किए गए हैं। श्रोताओं, आप इससे इस बात से बखूबी वाकिफ है कि बालतल के पूरे क्षेत्र में वातावरण बदलता रहता है, कभी वर्षा होती है कभी हल्की धूप खिलती है, तो इस को देखकर प्रशासन बार बार आपको ये सूचना साझा करते हैं कि आप इस पवित्र सफर के दौरान रेनकोट, जूते, गर्म कपड़े, लाठियां और अन्य व्यवस्थाएं साथ रखना ना भूलें, क्योंकि जो दुमेल कंट्रोल गेल से पवित्र गुफा तक 14 किलोमीटर का कठिन रास्ता है, उसमें कभी वर्षा भी होती है और ऑक्सीजन की कमी के बाइस आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इस कमी को दूर करने के लिए चिकित्सा विभाग ने जगह जगह चिकित्सा केंद्र कायम किए हैं। अगर यात्रियों को कहीं भी सफर के दौरान ऑक्सीजन की कमी महसूस हो तो उन्हें वाफिर मकदार में वहीं पे ऑक्सीजन फराहम किया जाता है, ताकि उन्हें इस पवित्र सफर के दौरान कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। और इस बीच जिला प्रशासन के अधिकारी जगह जगह आपकी सहायता के लिए टाको चौबंद रखे गए हैं, ताकि यात्रा के दौरान देश के विभिन्न भागों से आने वाले श्रद्धालुओं को यहाँ दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और अगर हम ट्रांजिट कम मैनगाम या ट्रांजिट कम शहरीपुरा की बात करेंगे तो यहाँ भी जो 5 बजे के बाद श्रद्धालु पहुंचते हैं, चाहे वो बालतल बेस कैंप से वापस दर्शन करके यहाँ पहुंचेंगे या जम्मू भगवती नगर से अपना सफर शुरू करके ट्रांजिट कैंप शादीपुरा या ट्रांजिट कैंप मैनगाम पहुंचेंगे तो 5 बजे के बाद उन्हें आगे जाने की अनुमति नहीं दी जाती है, बल्कि उन्हें इस दौरान यात्रियों को यहीं पे रात भर कायम करना पड़ता है। इन दोनों ट्रांजिट कैंपों में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं और साथ ही जिला प्रशासन गांधरबल ने उनके लिए उच्च स्तर की सुविधाएं उपलब्ध रखी हैं। व्यवस्थाओं को लेकर यात्री संतोष व्यक्त कर रहे हैं और उन्होंने आकाशवाणी को बताया कि इस वर्ष जिला प्रशासन ने यात्रियों के लिए हर पड़ाव पर बेहतरीन सहूलियत जो है वो दस्तियाब रखी है। श्रोताओं, हम भी आशा करते हैं कि आपकी ये तीर्थ यात्रा सुखद तरीके पर संपूर्ण हो सके। जी मैम,
1: जी बहुत शुक्रिया आपका। श्रोताओं, ये थे हमारे संवाददाता रहीम रिजवान साहब गांधरबल से।

0: विशेष प्रसारण श्रेया मनाजी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोता अभी फ़ोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता जावेद मेहराब साहब भगवती नगर जम्मू से। जी जावेद साहब
1: जी, बहुत शुक्रिया आपका। दोपहर की अपडेट्स के साथ मैं हाजिर हूँ। जम्मू में आसमान आज दिन ढलने के साथ ही साफ हो गया। खुली धूप और सुहानी हवाओं से श्रद्धालुओं को राहत नसीब हुई। वहीं स्थानीय लोग भी बारिशों के बाद निकली धूप, हालांकि गर्मी और उमस बराबर जारी है, लेकिन उसके बीच जब बारिश के बाद धूप निकलती है तो काम का और मोड़ का और ये जो काम करने का होता है वो बहुत ही एक अलग तरह का एक एनर्जी आती है, एक अलग तरह का सिस्टम बन जाता है। तो यहाँ निवास स्थान भगवती नगर से आज भी लगभग 3,800 से ज्यादा श्रद्धालु पवित्र गुफा की और बाबा बरसानी के दर्शन करने के लिए सुबह तड़के यहाँ से रवाना भी हुए और बाबा बरसानी के जयकारों की गूंज यहाँ निवास स्थान के आसपास और कड़ी तट पर उसी जोश जज्बे के साथ गूंज रही है। और कल रवाना होने वाले श्रद्धालु अपनी तैयारियों में, तीर्थ यात्रा की प्रक्रियाओं में पूरी तरह रवानगी के लिए तैयारियों में है और यहाँ प्रबंधन और सुविधाओं की पूरी तरह से बनी हुई है, क्योंकि आज एक दिन स्थगित रहने के बाद आज यात्रा 3,800 से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ से रवाना हुए और एक और जत्था कल के लिए तैयारी

और प्रक्रियाओं में जुड़ गया। तो ये जो तीर्थ यात्रा का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। कई बार संख्या कम हो जाती है और कई बार बाबा बर्फानी के श्रद्धालुओं की संख्या बराबर बढ़ जाती है। तो श्रद्धालुओं के लंगरों से श्रद्धालु लंगरों में व्यंजनों का मजा उठा रहे हैं। कड़ी धूप और कड़ी सबसे सुहानी हवाएं उनके बाबा बर्फानी के द्वार की तरफ जाने का जो संकल्प है

0: पूजा अर्चनाओं में भी हिस्सा ले रहे हैं, यहाँ के बाजारों में खरीदारी भी करके देखे जा सकते हैं, और इसके अलावा यहाँ के जो व्यंजन है मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में भी कुछ यात्री देखे जा सकते हैं, जिसमें वो अपनी तैयारियां भी की भी तैयारियां भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ शहर का जो मजा भी ले रहे हैं। हालांकि कल दिन भर मौसम आसमान पर बादल छाए हुए थे, लेकिन मौसम खुश्क था और कल की उम्मीद के साथ ही यहाँ अब जो धूप खिली है उसमें और उम्मीद बढ़ गई है, क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग की भी जानकारी जो आ रही है उसमें जो जहाँ भूस्खलन हुआ था वहाँ रास्ता बिल्कुल अब ठीक कर दिया गया है और बाव बर्फानी के जो तीर्थयात्री हैं वो निवास स्थान में जुटे हुए हैं अपनी तैयारियों में, और कल के जत्थे की तैयारियां जोर शोरों से चल रही हैं और परिसर पूरी तरह से धूप और खुली हवाओं में जो है वो तीर्थयात्री मजा ले रहे हैं और सुचारू रूप से जो है ये यात्रा जो है वो बराबर चल रही है और श्रद्धालु भी सुरक्षा को के मद्देनजर अपनी यात्रा को बेहतर बनाने के लिए यहाँ तमाम तरह की एडवाइजरीज पर अमल कर रहे हैं, और खास तौर पर जो प्राथमिकता है पहली प्राथमिकता जो प्रशासन की तरफ से भी है वो बाजाबता अपनी बनी हुई है और प्रशासन भी पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि पहली प्राथमिकता के साथ श्रद्धालुओं को यहाँ से रवानगी हो सके। तो जम्मू कश्मीर के बदले मौसम के मिजाज से प्रशासन के सामने जो तीर्थ यात्रा को बेहतर और सुचारू रूप से चलाने का चैलेंज है वो हर दिन एक नई चुनौती के साथ सामने खड़ा होता है, लेकिन यात्रा से जुड़े तमाम संस्थानों की कड़ी मेहनत और यात्रा बखूबी कामयाबी के साथ चल रही है और लाखों श्रद्धालुओं ने अभी तक दर्शन भी कर लिए, लगभग ये आंकड़ा 5 लाख के करीब होने जा रहा है। तो एक कामयाबी के साथ ये तीर्थ यात्रा का जो पर्व है यहाँ जम्मू से बाबर खाने की तरफ चल रहा है। जी
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
0: बहुत शुक्रिया।

0: विशेष प्रसारण श्याम अनाजी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, पल पल के अपडेट्स हम आपके साथ साझा करते हैं। हमारी फ़ोन लाइन पर जुट चुके हमारे संवाददाता इमरान नायकू श्रीनगर के पांथा चौक ट्रांजिट कैंप से। जी इमरान साहब।
1: जी बिल्कुल, जैसा कि सुबह भी हमने अपडेट किया था कि श्रीनगर के पांथा चौक ट्रांजिट कैंप से अमरनाथ जी यात्रियों का एक काफिला, एक जत्था जो है वो आज सुबह पालतल की तरफ रवाना किया गया हाई सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट के बीच में। और ये वो अमरनाथ जी यात्री थे जिनमें मर्द और ख्वातीन यानी मेल फीमेल और बच्चे साधु साध्वी शामिल थे, और जो कल यहाँ पहुंचे थे और उन्होंने यहाँ इस ट्रांजिट कैंप में किया और आज उन्हें जो है यहाँ से फिर पवित्र गुफा के दर्शन के लिए रवाना किया गया। उसके बाद एक और कॉन्वॉय श्रीनगर से ही सुबह निकली और जिसमें अमरनाथ जी यात्रियों को इसी बालतल के रास्ते अमरनाथ जी गुफा की तरफ रवाना किया गया सिक्योरिटी हैवी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट के बीच में। और मजीद यहाँ यात्री आ रहे हैं और यहाँ से जो यात्री आज रात को स्टे करेंगे, जो यहाँ रात को ठहरेंगे,

0: जी
1: उन यात्रियों को कल सुबह अमरनाथ जी के दर्शन के लिए रवाना किया जाएगा। और इस सिलसिले में जैसे कि अक्सर या कंटिन्यूअसली हम ये अपडेट भी कर रहे हैं कि अमरनाथ जी यात्री जो यहाँ पहुंचते हैं या जो यहाँ स्टे करते हैं, इनके लिए प्रशासन की तरफ से या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सारी सुविधाएं रखी गई है। और आज भी यहाँ से अलग अलग दो जत्थे निकले हैं और मजीद यहाँ लोग हैं या यात्रीज हैं जो कल यहाँ से निकलेंगे, आ रहे हैं और कल भी उन्हें यहाँ से रवाना किया जाएगा। और बेसिक जो फैसिलिटीज है, चाहे वो खाने पीने की सुविधाएं हो, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी हो, यहाँ हम देखें तो सैनिटेशन का जो निज़ाम हो या बाकी जितनी भी जो चीज़ें हैं वो अमरनाथ जी यात्रियों के लिए इस ट्रांजिट कैब में रखी गई है। और साथ साथ सिक्योरिटी के भी कड़े इंतजाम पहले से ही गवर्नमेंट या प्रशासन की तरफ से किए जा चुके हैं। और जहां तक आज श्रीनगर शहर में मौसम का ताल्लुक है, जैसे सुबह हमने अपडेट किया था कि अर्ली मॉर्निंग में काफी तेज बारिश हुई थी 2-2.5 घंटे, लेकिन उसके बाद मौसम में बेहतरी आई और इस वक्त श्रीनगर में धूप खिली हुई है और सुहाना मौसम है। और मौसम बिल्कुल इस वक्त श्रीनगर में साजगार है, सुहाना है और उम्मीद यही है कि मौसम इसी तरीके से बेहतर हो और अमरनाथ जी यात्रा जो है बिना बगैर किसी परेशानी के, बिना किसी रुकावट के ये जो यात्रा है ये अपने इख्तिताम तक पहुंचे। क्योंकि अभी चूंकि जो छड़ी मुबारक है अमरनाथ जी यात्रा की वो भी कश्मीर में ही है और उसे श्रीनगर के मुख्तलिफ जो मंदिर है वहां लिया जाएगा और एज पर द शेड्यूल जब उसको पहलगाम से फिर लास्ट पर जो है अमरनाथ जी गुफा तक पहुंचाया जाएगा। तो इसलिए मौसम का बेहतर होना अच्छी बात है और फिलहाल आज शहर में मौसम बिल्कुल साजगार है, सुहाना है और इस सब के बीच में अमरनाथ जी यात्री यहाँ से जो है रवाना भी किए गए और मजीद यात्री यहाँ पहुंच भी रहे हैं। और साथ ही एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन की भी जो है कंटिन्यूअसली यात्रा को लेके नजरे हैं और इस पर जो लोग अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, चाहे वो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, लाइन डिपार्टमेंट के लोग हों, श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड से ताल्लुक रखने वाले जो एम्प्लॉयज हों, या फिर हम देखें कि जो लोकल जो वॉलंटियर्स यहाँ पर है या सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो अपनी इस यात्रा को लेकर अपनी खिदमत पेश कर रहे हैं। तो फिलहाल आज भी हम देख रहे हैं कि यात्रा बड़े ही खुश लोभी के साथ या यूं हम कह के पीसफुल मैनर में जारी है और मौसम भी सुहाना है और उम्मीद भी यही है कि मौसम बेहतर हो और यात्रा बगैर किसी रुकावट के मुसलसल जारी रहे।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका।

विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आज 2 बजे तक 1668 तीर्थ यात्रियों ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त किए हैं, जिसमें पुरुषों की संख्या 1238, महिला 281, बालक 41, साधु 10, साध्वी 5, सुरक्षाकर्मी 93। तो कुल मिला के 1668 तीर्थयात्रियों ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त किए हैं।

विशेष प्रसारण श्रेया मनाजी यात्रा 2026। आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज पर, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। तमाम यात्रियों से निवेदन है कि आपको किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो तो आप हमारे

साथ जुड़ सकते हैं हमारे हेल्पलाइन के द्वारा। हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है वो है 9596990954 9596990954। इसके अलावा आप टोल फ्री नंबर भी नोट कर लीजिए, जम्मू के लिए है 1800180071981 1800180071981। श्रीनगर के लिए है 1800180071991 1800180071991। ईमेल आईडी भी आप नोट कर लीजिए, akashwanibaltal@gmail.com akashwanibaltal@gmail.com। क्षण क्षण के अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें।

विशेष प्रसारण श्रेया मनाजी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz पर, FM पहलगाम 100.1 MHz पर। श्रोताओं, आज 4 बजे तक कुल मिला के 1909 तीर्थ यात्रियों ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त किए हैं, जिसमें पुरुषों की संख्या है 1428, महिला 283, बालक 54, साधु 13, साध्वी 8, सुरक्षाकर्मी 123। तो कुल मिला के 1909 तीर्थयात्री ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त किए हैं।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: आपको अकेले ट्रैक नहीं करना चाहिए, हमेशा एक समूह में यात्रा करें और सुनिश्चित करें कि समूह में शामिल सभी लोग आपके सामने या पीछे चल रहे हैं, हमेशा आपकी दृष्टि में रहें, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप उनसे अलग ना हों।
0: किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जाए, इसके लिए आपको अपने समूह के किसी सदस्य जिसके साथ आप यात्रा कर रहे हैं का नाम, पता और मोबाइल टेलीफोन नंबर का एक नोट अपनी जेब में जरूर रखें। साथ ही अपना यात्रा परमिट या कोई और पहचान पत्र भी अपने साथ रखें।

विशेष प्रसारण श्रेया मनाज जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। तमाम यात्रियों से निवेदन है कि यात्रा के दौरान स्वच्छता बनाए रखें, प्रकृति का संरक्षण करें और अन्य यात्रियों के प्रति सहयोग और सद्भावना का व्यवहार रखें। किसी भी आपातकाल या असुविधा की स्थिति में तुरंत संबंधित अधिकारियों से संपर्क करें।

विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आपको बता दें कि एक अच्छी यात्रा वही है जो सिर्फ सुहानी ही नहीं बल्कि सुरक्षित और व्यवस्थित भी हो। अक्सर हम जल्दबाजी में कुछ बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं जो बाद में परेशानी का कारण बनती है। इसीलिए चाहे आप लंबी दूर की यात्रा कर रहे हो या किसी नए रास्ते पर जा रहे हो, कुछ बातों का नियमित रूप से ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है।

श्रोताओं, आए सुनते हैं बालतल बेस कैंप में रिकॉर्ड की गई आरती।

सभी भक्तजन भोले बाबा के चरणों में बैठकर भोले बाबा की पवित्र आरती का दर्शन कर रहे हैं, आरती श्रवण कर रहे हैं। आप सभी भक्तजन बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ, प्रीति के साथ, आनंद मन से भोले बाबा के भजन का ध्यान करेंगे।

0: बोलिए शंकर भगवान के
1: जय,
0: धर्म के
1: जय,
0: अधर्म का
1: नाश हो,
0: प्राणियों में
1: सद्भाव हो,
0: विश्व का
1: कल्याण हो,
0: गौ माता की
1: जय,
0: मात पिता की
1: जय,
0: गुरु जनों की
1: जय,
0: सभी संतों की
1: जय,
0: सभी भक्तों की
1: जय,
0: सत्य सनातन धर्म की
1: जय,
0: आज के आनंद की
1: जय,
0: भारत माता की
1: जय,
0: शंकर भगवान की
1: जय,
0: शंकर भगवान के परिवार की
1: जय,
0: शंकर भगवान के गणों की
1: जय,
0: शंकर भगवान के भक्तों की
1: जय,
0: अमरनाथ स्वामी की
1: जय,
0: बाबा बर्फानी की
1: जय,
0: नमः पार्वती पते।

Ah,

श्रोताओं, अब बाल तल में रिकॉर्ड की गई आरती समाप्त कर रहे थे। इसी के साथ हमारी आज की सभा समाप्त होती है। आपको बता दें कि श्री अमरनाथ जी यात्रा के इस विशेष प्रसारण में हमारे साथ बाल तल में हमारे साथी इंजीनियर्स थे समीर अहमद, नज़ीर अहमद मीर और मोहम्मद सलीम। मैं आपकी साथी उद्घोषिका पजमान फेरोज, इस विशेष प्रसारण के प्रस्तुतकर्ता श्री वसीम फारूक वानी और श्री गुलाम रसूल आखून। यात्रा का विशेष प्रसारण लिए हम आपकी सेवा में कल प्रातः 6:53 पर फिर उपस्थित होंगे। जब तक के लिए शुभ यात्रा, शुभ रात्रि, जय हिंद।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

उधर भरत जी अयोध्या से प्रभु राम जी को मनाने के लिए चित्रकूट पहुंचते हैं और राम जी से अयोध्या वापस चलने की प्रार्थना करते हैं।

राम जी की आंखें भर आती हैं और अपनी खड़ाऊ भरत जी को देते हुए अयोध्या की गद्दी संभालने के लिए वचन लेते हुए विदा करते हैं।

प्रभु श्री राम भरत जी को विदा कर पहुँचते हैं पंचवटी, जहाँ पर 14 वर्ष बिताने का निर्णय लेते हैं। तभी सूपनखा वन में घूमते घूमते प्रभु श्री राम को देख मुग्ध हो उठती है और राम से विवाह करने का प्रस्ताव कुछ इस प्रकार से रखती है।

प्रभु श्री राम सूपनखा का आत्मनिवेदन न मानते हुए अपने भाई लक्ष्मण को इशारा करते हैं और भाई लक्ष्मण अपने प्रभु राम जी का आदेश पाते ही तीर से सूपनखा की नाक काट लेते हैं। और उधर रावण के दरबार में राग रंग उत्साह, जेहर देखा हर तरफ खाली वाहे वाह। इतने में रोवत उहां गैल सूपनखा आए, पड़ल रंग में भंग औ गैल सनाका छाए। और यह देख रावण अपनी बहन का हाल मारीच को समझा बुझाकर उसे स्वर्ण मृग के रूप में पंचवटी भेजते हैं।

सीता पंचवटी में स्वर्णमृग को देखकर मोहित होकर राम जी से स्वर्णमृग मांगने का प्रस्ताव रखती हैं।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

श्रावण मास के पवित्र अवसर पर प्रस्तुत है द्वादश ज्योतिर्लिंग पर आधारित ये कार्यक्रम, जिसमें आज आप जानेंगे श्री ओमकारेश्वर।

0: ज्योतिर्लिंग के बारे में। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
1: आज हम आपको एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा पर ले चल रहे हैं जो न केवल धार्मिक आस्था से जुड़ी है बल्कि प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक समृद्धि से भी ओतप्रोत है। हम बात करेंगे सावन मास के महत्व की और साथ ही जानेंगे ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। यह मास न केवल भक्ति भाव से भरा होता है बल्कि इसकी हर बूंद में भक्ति की सरिता बहती है। मान्यता है कि इस महीने में भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। खासकर सोमवार के दिन शिवजी की पूजा, व्रत और रुद्राभिषेक का विशेष महत्व होता है। सावन में कांवड़ यात्रा का भी विशेष महत्व है, जिसमें शिव भक्त दूर दूर से गंगा जल लेकर शिवालयों में जलाभिषेक करते हैं। अब आइए हम आपको ले चलते हैं मध्य प्रदेश के पवित्र स्थल ओंकारेश्वर की ओर। नर्मदा नदी के किनारे बसा यह तीर्थ स्थल मालवा और निमाड़ की सीमा पर स्थित है। यहाँ पर नर्मदा नदी एक अर्धचंद्राकार द्वीप बनाती है और यहीं स्थित है भगवान शिव का ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा जितनी पौराणिक है उतनी ही अद्भुत इसकी भौगोलिक संरचना भी है। यह अर्धचंद्राकार द्वीप देखने में बिल्कुल ओम के आकार के समान प्रतीत होता है और शायद इसी कारण इस स्थान को ओंकारेश्वर कहा जाता है। यह रूप न केवल भारतवर्ष में बल्कि विश्व में भी दुर्लभ है। ओंकारेश्वर दो शब्दों से मिलकर बना है, ओंकार अर्थात ब्रह्म का प्रतीक ओम और ईश्वर अर्थात भगवान। यह स्थान न केवल एक धार्मिक केंद्र है बल्कि अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य का भी प्रतीक है। शिव ही आदि और अनंत हैं। उन्होंने यहाँ पर ज्योतिर्लिंग के रूप में दर्शन दिए। ओंकारेश्वर का विशेष पक्ष यह है कि यहाँ दो मंदिर पूजनीय माने जाते हैं। एक है ओंकारेश्वर मंदिर जो मुख्य द्वीप पर स्थित है और दूसरा है ममलेश्वर मंदिर जो नर्मदा नदी के पार स्थित है। कई विद्वानों का मत है कि ये दोनों मिलकर ही एक ज्योतिर्लिंग के दो स्वरूप हैं। मंदिरों के इस द्वैत में अद्वैत भाव को देखना, शिव के अद्भुत दर्शन को अनुभव करना हर भक्त के लिए सौभाग्य की बात होती है। एक मान्यता यह है कि आदि शंकराचार्य ने यहीं पर अपने गुरु से दीक्षा प्राप्त की थी और आगे चलकर सनातन धर्म के एकत्व का संदेश दिया। वहीं उन्हें ज्ञान की दीक्षा मिली और उन्होंने भारत के चारों कोनों में मठ स्थापना और अद्वैत वेदांत का प्रचार आरंभ किया। यानी यह स्थान केवल तीर्थ नहीं, धार्मिक जागरण और वैदिक ज्ञान की जननी भी है। इतिहासकारों के अनुसार ओंकारेश्वर क्षेत्र में प्राचीन काल से ही शैव और वैदिक परंपराओं का समागम रहा है। यह स्थान गुप्त, परमार और होलकर शासकों के अधीन रहा और समय समय पर मंदिरों के जीर्णोद्धार और विकास के कार्य होते रहे। आज भी ओंकारेश्वर में कई प्राचीन गुफाएं हैं जिनमें योगियों और तपस्वियों ने तप किया। आज ओंकारेश्वर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि जीवंत सांस्कृतिक केंद्र बन चुका है। यहाँ एक भव्य आदि शंकराचार्य की प्रतिमा स्थापित की गई है। यह प्रतिमा अद्वैत दर्शन, एकात्मता और भारत की सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक मानी जाती है। यहाँ पर शंकराचार्य लोक के नाम से एक तीर्थ क्षेत्र विकसित किया गया है जहाँ आध्यात्मिक शिक्षाएं, ध्यान केंद्र और सांस्कृतिक गतिविधियां संचालित होती हैं। ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। इंदौर से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थान सड़क मार्ग से आसानी से पहुंचा जा सकता है। नजदीकी रेलवे स्टेशन भी ओंकारेश्वर रोड है जहां से नियमित परिवहन सेवा उपलब्ध है। सरकार द्वारा पर्यटन सुविधा को बेहतर बनाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। ओंकारेश्वर मंदिर की निर्माण शैली भी देखने योग्य है। नक्काशीदार शिखर, सुंदर गुफाएं, घाट और मंदिर की शांति मन को अद्भुत सुकून देती हैं। यहाँ प्रतिदिन अभिषेक, आरती और भजन का आयोजन होता है, लेकिन सावन के महीने में यहाँ विशेष भीड़ होती है। सावन में जहाँ जलाभिषेक के लिए दूर दूर से शिव भक्त आते हैं तो वातावरण भक्तिमय हो उठता है। सावन का यह महीना हमें अपने भीतर की अशांति को शांत करने का अवसर देता है। ओंकारेश्वर जैसे पावन स्थलों की यात्रा न केवल हमारी आस्था को दृढ़

0: करती है बल्कि जीवन में संतुलन और सकारात्मकता का भाव भी जागृत करती है। तो श्रोताओं, इस सावन मास में यदि अवसर मिले तो ओंकारेश्वर के दर्शन अवश्य कीजिए, और यदि यात्रा संभव न हो तो श्रद्धा से किए गए शिव पूजन भी उतने ही फलदायक होते हैं। आशा है यह यात्रा आपको आध्यात्मिक रूप से समृद्ध कर गई होगी।
1: अभी आप इस कार्यक्रम में श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में सुन रहे थे।

ललिता सहस्रनामना किंवा सरसनामशे। श्रीमाता श्री महाराग्नी श्रीमत सिंहासनेश्वरी श्री

एक श्री माता ललिता जी, ऐश्वरी ना महाराजनी, शोभायुक्त ए सिंहासन ऊपर विराजेला सिंहना अग्नि कुंडरूपी ज्ञान माथी उत्पन्न प्रगट थयेला देवोना कार्य माटे तत्पर साथे चरणमाना नखरूपी चंद्रना किरणों वड़े जनमानसना तमोगुण ने हरी लेनारा बन्ने चरणनी कांति प्रभाथी कमलोनी शोभाने झांकी करनारा ए ललिता देवी ने अमारा प्रणाम।

ये दुर्गा माता, सती साध्वी, भगवान शिव पर अपार प्रीति रखनारा, भवानी संसारना बंधनमाथी मुक्त करनारा, आर्या दुर्गा जय अपावनारा, आद्या त्रिनेत्रा त्रिशूलधारिणी दुर्गा देवी ने अमे प्रणाम करिए।

अर्थात शरद ऋतुना चंद्रना किरणो एमना जेवी उज्ज्वल कांतिवाळा उत्तम रत्नो जेमा जळ्या छे ते मकराकृती कुंडल तथा हार वगैरे आभूषणो थी शोभता दिव्य आयुधो थी ओपता दिव्य नील रंगना हजारो हाथ वाला लाल कमल जेवा चरणों वाला परमेश्वरी श्रीमाताजी नू हूँ प्रातःकाले स्मरण करूँ छू नमन करूँ।

परखो तम पूरा ओखण हारा पातशाह प्रित पालन ऊरा पत ति उधारन प्राण पत सद सदा हजूरा वै प्रगट्यो पुरख।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।